0: ଧନ ଜୀବନ ଯୌବନ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ବା ଅହଙ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା, ସମୟ ସକାଳ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध

0: विरुद्ध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियानो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बारिपदा आरंभ करुछो आज सकाळर भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना। विजय कुमार मिश्र वंदनार प्रथम कंठ शिल्पी कंठरे तंकर नारायण प्रसाद सिंह रचना शिल्पी विजय कुमार मिश्रा।

0: बीजेपि विकासं निर्दिश्य श्रीशाहः प्रावोचत् यत् एषा उपलब्धिः गत द्वादश वर्षेषु भारतस्य अर्थव्यवस्थया सुदृढतां प्रकटयति। अथ च क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये स्पर्धा अद्य न्यू चंडीगढ़स्य मुलानपुर स्थिते महाराजा यादवेन्द्र सिंह अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे आरप्स्यते। अस्यां स्पर्धायां शुभमन गिलः भारतीय दलस्य नेतृत्वं विधास्यति। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं प्रातः सार्धनववादने आरप्स्यते। पुरुषाणाम् अंडर 18 इति आ अष्टादश एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंक अंतरालेन पराजितम्। अपरतः महिलानां आ अष्टादश एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी बारिपदा आपण माने कार्यक्रम सुनुछंती प्रचारित होउछि एफएम बैंड रे 102.9 मेगाहर्ट्ज जोगे समय सकाळ 7:00। आज हम केन्द्ररो प्रचारबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्क रे सूचना संताळ एकला प्रचार करबो सकाळ 7:25 रे। आज एथिरे रहिछि नाटक तवादारे रचना सत्यरंजन किस्को एवं प्रयोजना रवन बास्के। सुगम संगीत शुणे सका 7:55 गीतांजलि सका 8:15 सका 9:00 एवं पूर्वाह 10:05 कार्यक्रम रिले कर आकाशवाणी विविध भारती प्रसारण सेवा दिल्ली दिन 12:00 प्रचार कर झुमर परेषण कर शिल्पी हाड़ीराम महांत और साथी कलाकार नारी महल दिन 1:20 रिले कर आकाशवाणी कटक केन्द्र अपराह 2:45 रु संध्या 6:00 जाए कार्यक्रम रिले कर आकाशवाणी विविध भारती प्रसारण सेवा दिल्ली संध्या 6:00 प्रचार कर कतोटी भक्ति गीत सुगम संगीत शुणे संध्या 6:15 संध्या 6:30 सूचना और संवाद राति 7:00 आदिवासी संगीत कार्यक्रम रही मुंडारी संप्रदायर गीत परेषण कर शिल्पी सुरेन्द्रनाथ सिंह और साथी कलाकार प्रायोजित कार्यक्रम बनानी राति 7:30 रिले कर आकाशवाणी कटक केन्द्र राति 8:00 हिंदी गतचित्र गीतर कार्यक्रम राति 8:30 आम साप्ताहिक विज्ञान भित्तिक कार्यक्रम विज्ञान वार्ता आज रही आलोचना शीतताप नियंत्रण जंत्र बहुल व्यवहार द्वारा मनीषर स्वास्थ्य उपर पड़ा कुप्रभाव इस शीर्षक आलोचना करिछन्ते स्मिता दास। पुरातन हिंदी एवं ओडिया चलचित्र गीत को नहीं कार्यक्रम गीत अतीत राति 8:40 राति 9:15 कार्यक्रम रिले कर आकाशवाणी विविध भारती प्रसारण सेवा दिल्ली नाटक प्रचार कर राति 10:00 और राति 10:30 एकक हिंदी कथाचित्र गीतर कार्यक्रम यह आज आम केन्द्र प्रचार होगा कार्यक्रम संपर्क में सूचना आकाशवाणी बारिपदा परवर्ती कार्यक्रम घोषणा शुणिपारे टिके।

0: ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ କଣ୍ଠ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଣବ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରଚନାରୁ ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା ସମୟ ସକାଳ 8:00 ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ ରିଲେ କରୁଛି ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
4: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
3: प्रधानमंत्री ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
4: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
3: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
5: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए

0: जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
2: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
5: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
7: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
8: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है।

0: सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से

0: वादे के में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी
3: आकाशवाणी बारिपदा समय सकाळ 8:15 आरंभ करुछु आजर गीतांजलि। नित्यदिनिया जीवनरे केते हसलोको नहीं गड़ी चले जीवनर गाड़ी। जीवनर प्रत्येक अवस्था क्षणस्थायी। बाल्यकालर घटना भळि विस्मृतिर गर्भरे लुचि जाउथिबा बेले जीवनर परवर्ती समयरे समयर स्मृति मनर आयनारे प्रतिफलित हुए। प्रति मुहूर्तरे स्मृति सबु भावनार रूप नहीं जोड़ी होइछे जीवनर गोटे गोटे पृष्ठारे। प्रति पृष्ठारे नूतन भावना नूतन उद्दीपना एसबुक नहीं रुधिवंत हुए जीवन।

0: हाँ भाई क्या रे चलो हो
1: खोरा पानी पवन सबुर समाधान करते हो
0: ओहो माने कथा टा के फिटे कि कुहो
1: माने सिनी आ उषा कंपनी रो इलेक्ट्रिक फैन उषा रो सिलाई मशीन टुलु उषा कमेंट ग्रिप्स होंडा कंपनी रो पंप सेट जेट समरसिबल मोनोब्लॉक आ होंडा कंपनी रो जनरेटर पंप सेट पावर विडर घास कटा यंत्र पेट्रोल डीजल किरोसिन पंप सेट रे 10,000 पर्यंत एवं होंडा पावर विडर रे 30,000 पर्यंत सरकारी रियायती सहित जेट सब रकम सुविधा मिलुची
0: केठे मिलुची हो एते सुविधा
1: जानी नो किहो बारीपदार अति परिचित दुकान पोरा
2: ठिकना होची मेसर्स बाबूलाल अग्रवाला मेन ट्रैफिक स्क्वायर तीनकुनिया छक बारीपदा
0: ताला जीबा ना की कहउचो
1: चलो
3: सजफुटा गोलाप परी मुहरे तार लाजर ओढ़णी ओढ़णी फांकर चेकमेक देखा जाउथिबा जोडिया आखिरे सपनर ठेउ विधातार कलम मनरे आंकी होई जाइथिबा अपरूपा रूपसीटिए तार मेलरे उंकी मारुथिबा सतेजमिति रूपसी जन्नटिए।

0: हाँ आराम से संभाल के। हाँ
1: देख रहे हो इरालाल को, खेती से ये शान है।
2: कोई तो मदद करता होगा।
0: हाँ मेरा बैंक।
3: बैंक? वो कैसे?
0: बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड देकर छोटी खरीदारी और फसल के लिए लोन पाना आसान बनाया। किसान क्रेडिट कार्ड से मैंने खेती से संबंधित सभी आवश्यक निवेश और खर्चों को पूरा किया, और वो भी बगैर कैश लेन देन से। इस खाते का नवीकरण भी आसान है।
3: फिर तो रोज बैंक जाते होगे।
0: बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी सावधानी से सभी लेन देन डिजिटल यानी फोन से या कार्ड से हो जाते हैं। ये लेन देन करते समय इस बात का ध्यान रहे कि आप अपना OTP, पिन, CVV किसी को ना बताएं।
4: खाता खोलेंगे, बैंक से नाता जोड़ेंगे।
5: RBI कहता है, जानकार किसान समृद्ध किसान।
6: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी।
7: आखिर पलकरे सपनर घर, बेपरुआ मनरे कहार भावना, जीवन बाटरे हाथ धरी चलिबार कामना, कहार कौल मुहटी को टाणी आने आखि आगको।

ने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में सुपर 30 फिल्म का गाना। अमिताभ भट्टाचार्य हैं गीतकार और संगीतकार हैं अजय अतुल।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बागों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे नकश अजीज और मधुवंती बागची की आवाजों में लव्यापा फिल्म का गाना। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए दिल धड़कने दो इस फिल्म का गाना। आवाज है सुनिधि चौहान की, लिखा है इसे जावेद अख्तर ने और संगीत संवारा है शंकर एहसान लॉय ने।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए विशाल मिश्रा, नेहा भाषिन और इरशाद कामिल की आवाजों में बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इस फिल्म का गाना इरशाद कामिल हैं, गीतकार और संगीतकार हैं विशाल मिश्रा।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भैया जी सुपरहिट इस फिल्म का गाना। जैसे देसाई और पवनी पांडे की आवाजों में अमजद नदीम थे गीतकार और संगीतकार भी। लीजिए अब सुनिए आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाजों में कौसिर मुनीर हैं गीतकार और संगीतकार हैं साजिद वाजिद, और फिल्म का नाम है

सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: कभी इस पग में

ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

वो चाहे अलसाई सी दोपहर हो, कोई हसीन शाम हो, या फिर कोई उदास अकेली रात। राजेंद्र कृष्ण के बोल उन पलों में कभी प्यार, कभी इकरार, कभी रुसवाई और कभी जिंदगी का कोई और दर्द इस तरह भर देते हैं कि उस दर्द से भी मोहब्बत हो जाए।

6 जून 1919 को शिमला में जन्म हुआ था अपने कलम से दिलकश नगमों को जन्म देने वाली इस गीतकार का। बहुत कम उम्र में ही राजेंद्र कृष्ण मोहित हो गए थे कविता पर। रोजी रोटी की जद्दोजहद में 1940 तक म्यूनिसिपल ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की। उनकी इस नीरस नौकरी को रसीला बनाती रही फिराक गोरखपुरी, एहसान दानिश, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी की रचनाएं। 1940 के मध्य में राजेंद्र कृष्ण मुंबई आ गए। फिल्मों की दुनिया में बतौर लेखक और गीतकार अपनी प्रतिभा को आजमाने। संघर्ष की जंजीरें टूटी 1947 में जब फिल्म जंजीर के लिए

चुप खड़े हो जरूर कोई बात।

तमिल के जानकार राजेंद्र कृष्ण उन दिनों के मद्रास के मशहूर बैनर एडीएम की पहली पसंद बन गए। वहां के अन्य निर्माताओं ने भी राजेंद्र कृष्ण की रचनात्मक प्रतिभा की कद्र की। एवीएम की लगभग सभी हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट के अलावा उनके गीत लिखे राजेंद्र कृष्ण ने।

राजेंद्र कृष्ण ने अपने समकालीन लगभग सभी नामचीन संगीतकारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे अलबेले गीत। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में फिल्म खानदान के इस गीत के लिए।

1988 में शब्दों का ये चितेरा हमारे होठों पर अपने गीतों की गुनगुनाहट छोड़कर शब्द ब्रह्म में ही विलीन।

0: मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए,
1: कहिए,
2: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना,
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमन में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि

0: भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यह यात्रा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में साझा समृद्धि, संपर्क और सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एकजुटता और आपसी सहयोग की भावना के साथ बिम्स्टेक सदस्य देशों के साथ सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कई दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल दिखाई दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत कूनो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है और कैराकल की वापसी इसी का प्रमाण है। खेलों में भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेज होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ, बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही, बाद में ही सही। समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा। मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है। सबसे पहले मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी, फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है। पड़ोस में नई किरायेदार आई है ना, मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। 2 दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई, जैसे मेरी बुराई कर रही हूँ। और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना, अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई। मैं दरवाजा खोलता हूँ, तुम खाना लगाओ। लो, मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर। और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा, मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।

भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मिली। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती है? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं। अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी

इतना प्यार करती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ, मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा, तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहे तो बुरी लगती है। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है, वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती है, पलकों पर बिठाती है उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है, प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है, अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना, आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था, बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी। रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आई, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थी। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुन लूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना। संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है, संदीप ने चुटकी ली।

मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ? आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में? संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा और दोनों खिलखिला पड़े।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थी, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थी। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं, जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटा कर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया, आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया, भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतनी सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी, मैंने कहा तो था तुमसे माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा, भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी आप इतनी सुबह, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो, मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो तो आज

तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया।

माँ मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम

कितना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल। शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी। और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी। चंदेरी की साड़ी। मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी। इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी। कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था।

ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी, सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूँ पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी। खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए, रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी, अब तो आप खुश है ना? भाभी आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ, आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना अब तुम मुझे सिखा देना। साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं? और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है? मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आई। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले और एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्र।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम था मौसम। गीतकार थे गुलजार साहब और संगीत दिया था मदन मोहन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का।

0: यह आवाज थी आशा भोसले की और फिल्म का नाम था उमराव जान। इसे लिखा था शहरयार ने और धुन बनाई थी खयाम साहब ने।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में अब सुनिए जयदेव के संगीत निर्देशन में मखदूम मोहिउद्दीन की लिखी रचना। गायिका है छाया गांगुली और

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम

0: भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मन चाहेगी विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: लीजिए अब सुनिए हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत निर्देशन में गुलजार साहब की रचना, आवाजें हैं आशा भोसले और सत्यशील देशपांडे की।

अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की

0: तीन चीजें अगर हम कर पाए ना, तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम होंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है, और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब आज का चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब सुनिए मैटिनी शो।

आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म थ्री इडियट्स के कुछ गीत। जी हाँ, फिल्म थ्री इडियट्स, जिसे आपने भी देखा होगा, इसी पर आज हम कुछ बातचीत कर लेंगे। क्यों, ठीक है ना? तो आप सभी जानते हैं कि फिल्म थ्री इडियट्स बहुत ही फेमस फिल्म है और ये फिल्म कई विषयों की पड़ताल के लिए जानी जाती है, खासतौर से शिक्षा प्रणाली की जो मुद्दे हैं, शिक्षा प्रणाली के मुद्दे हैं, उनसे जुड़ी जो आलोचनाएं हैं और शिक्षा से जुड़े जो सामाजिक दबाव हैं बच्चों पर, परिवार पर, उस पर केंद्रित रही ये फिल्म थ्री इडियट्स। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, आवाजें सोनू निगम, शान और स्वानंद किरकिरे की। गीत को स्वानंद किरकिरे ने ही लिखा है और धुन शांतनु।

ईरानी और ओमी वैद्य मुख्य भूमिकाओं में थे और इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार हीरानी ने किया था। गीत स्वानंद किरकिरे ने लिखे थे और संगीत था शांतनु मोइत्रा का। और हाँ, हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म में आमिर खान ने फुनसुक वांगड़ो के रूप में भूमिका निभाई थी रेंचो की, जिसे रेंचो के नाम से हम जान रहे थे। शर्मन जोशी जो हैं राजू रस्तोगी के रूप में बहुत ही अच्छा किरदार निभा रहे थे और आर माधवन फरहान कुरैशी के रूप में थे। करीना कपूर ने पिया के रूप में अपनी बहुत ही खास भूमिका निभाई और इस फिल्म का केंद्र बिंदु थे बोमन ईरानी, जिन्होंने प्रोफेसर वीरू वायरस सहस्त्रबुद्धे के रूप में अपनी भूमिका निभाई। ओमी वैद्य ने चतुर रामलिंगम जो साइलेंसर के रूप में थे अपनी काफी अच्छी भूमिका निभाई और मोना सिंह मोनिका के रूप में थी। राहुल कुमार को मिलीमीटर के रूप में फिल्म में दर्शाया गया था। तो कुल मिलाकर ये फिल्म जो थी बहुत ही शानदार तरीके से एक शानदार विषय पर फिल्माई गई। निर्माता विधु विनोद चोपड़ा थे जिन्होंने बहुत ही सुंदर विषय उठाया और कहते हैं कि फिल्म जो है चेतन भगत के उपन्यास 5.1 पर आधारित थी और इस फिल्म की पटकथा यानी स्क्रीन प्ले राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने लिखा था और जैसा कि हमने बताया शांतनु मोइत्रा ने संगीत दिया था और स्वानंद किरकिरे ने अपने गीतों से इस फिल्म में चार चार

0: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो।
1: ये स्वर है सूरज जगन और शर्मन जोशी के।

बच्चों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: टू मैटिनी शो में आज हम बात कर रही हैं फिल्म थ्री इडियट्स की। थ्री इडियट्स फिल्म भारतीय हिंदी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मील का पत्थर माने जाने वाली फिल्म है और ये फिल्म शिक्षा प्रणाली की कमियों और सामाजिक दबाव, जिस पर मैंने अभी बात कही थी आपसे, उस पर एक तीखा व्यंग्य है जो दर्शकों को अपने जुनून को चुनने की सलाह देता है, संदेश देता है और जीवन को सरलता से जीने का भी संदेश देती है ये फिल्म। क्योंकि जिंदगी में हम आज इतने तनावग्रस्त हैं, हमारे बच्चे जो करियर चुनना चाहते हैं अच्छा मनपसंद, लेकिन इतना बोझ है शिक्षा का कि वे समझ नहीं पाते कि क्या किया जाए। तो ये फिल्म स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे हमारे जो शिक्षण संस्थान है, जो एजुकेशन है, वो सिर्फ रटने वाली विद्या पर बढ़ावा देती है, यदि नवाचार, जो कहा जाता है कि नवाचार कीजिए, उस पर इतना नहीं जोर देती है जितना कि रटने जैसी विद्या पर, ताकि बच्चे किसी पोस्ट पर जब जाते भी हैं, किसी कैरियर को चुनते भी हैं, तो कई बार उनका पढ़ावा कहीं काम ही नहीं आता है। तो ये फिल्म ये भी दर्शाती है कि जो माता पिता हैं वो बच्चों पर कैरियर का विकल्प थोपे नहीं कि आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, यानी आपको काबिल बनना है, कामयाबी की राह पर चलना है और इसके लिए आपको अपने सपने देखने हैं, अपने सपनों के पीछे भागना है। ये फिल्म साफ संदेश देती है कि काबिल बनो और कामयाबी तो आपके पीछे झक मार कर आएगी, बस तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है।
1: जाने नहीं।
0: और मेहनत भी ऐसी जो आपके सपने हैं, जो आपके ख्वाब हैं, जो आपकी कल्पना में हैं।

जी, तो आप सभी ने फिल्म थ्री इडियट्स देखी होगी, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो इंसानी जीवन का संघर्ष है उसकी एक शानदार कहानी है। और ये फिल्म दर्शाती है कि हमें अपने अस्तित्व के लिए बचपन से ये लड़ाई लड़नी शुरू करनी होती है, क्योंकि बच्चा जब दुनिया में आता है तो अपने माता पिता की आशाओं से भरी निगाहों को देखता है, जो चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने या कोई बड़ा अधिकारी बनकर परिवार का नाम रोशन करे। माता पिता इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ होते हैं कि उनकी अपेक्षाएं वास्तव में उनके बच्चों को लाभ पहुंचा रही हैं या उनके मानसिक दबाव को बढ़ा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं, बल्कि या ऐसा कि उनका कोई निजी स्वार्थ होता हो, लेकिन हाँ, माता पिता भी कई बार जरूरत से ज्यादा बच्चों पर जब बोझ लाद देते हैं तो फिर एक अलग कहानी पैदा हो जाती है। माता पिता की अपेक्षाओं का दबाव और बच्चे को और ज्यादा गंभीर बना देता है, तनावग्रस्त बना देता है, और अपनी जिंदगी में जो बचपन की दुनिया है उसे भूलकर एक मानसिक दबाव की जिंदगी जीने लगता है। तो ये फिल्म एक ऐसे पिता की कहानी बताती है जो अपने बेटे को, जिसे वन्य जीव फोटोग्राफी का बहुत शौक था, इंजीनियरिंग करने के लिए मजबूर करने की अपनी गलती को अंततः स्वीकार करता है और उसे अपने दिल की बात मानने की अनुमति देता है, जो कि हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे से बात करे और पूछे कि आखिर उनका बच्चा क्या बनना चाहता है और उस दिशा में क्या वो सच में मेहनत करेगा या खाली ख्वाब दिख रहा है या सपने दिख रहा है।

ये आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की थी। तो आज हम बात कर रहे हैं फिल्म थ्री इडियट्स की, और आप सभी ने अगर ये फिल्म देखी है तो निश्चित रूप से आप इस फिल्म को पसंद किया होगा। और इस फिल्म में शायद पहली बार शहरी कॉलेज जाने वाले छात्रों को एक सही रूप से बोलते हुए या कपड़े पहने हुए दिखाया गया है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि बहुत ही बड़े रूप में, एक अलग रूप में कॉलेज का दृश्य दिखाई देता है जो आम कॉलेजों से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन इस फिल्म में वैसा ही दृश्य दिखाया गया है जैसा फिल्मों में हमारे जीवन में भी वैसा ही दृश्य हमें कॉलेज का मिलता है। और दोस्ती की एक दिल को छू लेने वाली और दिल को उत्साहित कर देने वाली कहानी है, और जहां इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। और हमें लगता है कि इस तरह की फिल्में अगर बनाई जाए तो निश्चित रूप से ये फिल्में हमें कुछ सीखने को तो देगी ही, और आम लोगों से भी फिल्मों का कनेक्शन जुड़ेगा। क्योंकि थ्री इडियट्स जैसी फिल्में जब बनती हैं, जहां पर किसी विषय को, किसी मजबूरी को, किसी सपने को, किसी सच्चाई को उठाया जाता है, तो वो आम लोगों से कनेक्ट करती है फिल्म, ऐसा माना गया है। ये है थ्री इडियट्स फिल्म का आखिरी गीत, शान और शांतनु मोइत्रा की आवाजों में, स्वानंद किरकिरे की रचना, शांतनु मोइत्रा का संगीत।

मैटिनी शो में अभी आप सुन रहे थे फिल्म थ्री इडियट्स के कुछ गीत। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार।
1: ଏତେବେଳେ ଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ଶୁଣାଇଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ବିବିଧ ଭାରତୀ ପ୍ରସାରଣ ସେବା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା ଷ୍ଟୁଡିଓ ଘଡ଼ିରେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:00। ପ୍ରେସାର କରୁଛୁ ଝୁମର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ହାଡ଼ିରାମ ମହାନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀ କଳାକାରମାନେ। ଝୁମର ଶୁଣିପାରିବେ ଏ ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି ପରେ ପରେ।
2: देख रहे हो हीरा लाल को, खेती से ये शान है।
3: कोई तो मदद करता होगा।
4: हाँ, मेरा बैंक।
5: बैंक? वो कैसे?
4: बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड देकर छोटी खरीदारी और फसल के लिए लोन पाना आसान बनाया। किसान क्रेडिट कार्ड से मैंने खेती से संबंधित सभी आवश्यक निवेश और खर्चों को पूरा किया, और वो भी बगैर कैश लेन देन से। इस खाते का नवीकरण भी आसान है।
5: फिर तो रोज बैंक जाते होगे।
4: बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी सावधानी से सभी लेन देन डिजिटल यानी फोन से या कार्ड से हो जाते हैं। ये लेन देन करते समय इस बात का ध्यान रहे कि आप अपना OTP, पिन, CVV किसी को ना बताएं।
6: खाता खोलेंगे

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामलां मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघुरूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष।

0: वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
1: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाजें मोहम्मद रफी और साथियों की।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म ब्लैकमेल में।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मन चाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मन चाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
3: राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें फिल्म शहनाई के लिए।

0: ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है, और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म शारदा से आपके लिए चुना है। गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और आशा भोंसले, राजेंद्र कृष्ण के भूल तुम्हें ही और सी रामचंद्र का संगीत है।

लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज थी फिल्म शारदा के लिए। राष्ट्र

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर। हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरं।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2:00। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने गीतकार राजेंद्र कृष्ण को याद किया।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: जी बताइए कैसे हैं आप लोग।
1: हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे हैं और हमारे कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। और आपकी टिप्पणियां, आपके संदेश पढ़कर हमें पता लगा कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और थोड़ा सा परेशान भी हो गए थे कि क्या बात है, आज सुरीला सफर में हम सफर करेंगे कि नहीं। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये कार्यक्रम आपका अपना है और हम हर दिन आपके साथ, या यूं कहें कि आप हमारे साथ सफर करते रहेंगे। हाँ थोड़ा कभी कभी आगे कभी कभी पीछे हम हो सकते हैं, होना नहीं चाहिए पर ऐसा कभी कभी हो जाता है। तभी तो जब ऐसा होता है, यानी कभी समय ज्यादा हो जाता है, कभी समय से पहले कुछ हो जाता है, तो हमारा ये मन व्यथित हो जाता है। और आज इसीलिए हमने कुछ ऐसे गीत चुने हैं जो आपके मन को प्रभावित जरूर करेंगे। और हमने हमारी इबारत बहुत छोटी रखी, कई श्रोताओं ने लिखा है कि अरे इतनी छोटी इबारत, जब हम बहुत बड़ी इबारत रखते हैं तो आप कहते हैं माशाल्लाह कितनी बड़ी इबारत रखी है। तो ऐसा नहीं है, जब मन में जो विचार आते हैं जिस गीत को लेकर या आज इस कार्यक्रम को लेकर, हम वैसा ही लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे अच्छा तो आप लिख देते हैं जनाब, जिसे हम पढ़ते हैं आप सभी के साथ साझा करते हैं। तो आज हमारी छोटी सी इबारत है कि कभी कभी मन का रेगिस्तान सूख जाता है, या यूं कहें कि कभी कभी मन जो है रेगिस्तान सा हो जाता है, मन प्यासा हो जाता है। इस भागती दौड़ती दुनिया में हर कोई, आप हम, किसी न किसी चीज का प्यासा है ना। उदास मन को बस एक अदृश्य मीठी सी बूंद की तलाश होती है। अगर आज यूं कहें कि आपका मन जब भी उदास हो तो रुकिए, खुद को कोसिए मत, कोसना बंद कीजिए, आसमान की ओर देखिए, सूरज खुद जलकर औरों को ऊर्जा और प्रकाश दे रहा है। बस यही जीवन दर्शन है, इसलिए इस जीवन दर्शन को लेकर आज हमने इबारत रची। तो छोटी सी इबारत थी, क्योंकि जब दर्शन की बात हो गई तो क्या कहना चाहिए, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात है ना। तो आपने मन के बारे में, सूरज के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हाँ हमने आपको लिखा था कि इस इबारत में आज के चुनिंदा गीतों से संबंधित कोई शब्द नहीं रखे गए हैं, जिसे लेकर आप अक्सर परेशान हो जाते हैं कि भाई इस शब्द पर तो बहुत सारे गीत हैं। आज हमने आपको इतना बड़ा क्लू दे दिया और उसको जानकर आपने देखिए कितने कम समय में कितने सारे गीत चुन लिए हैं जो हमारी पसंद के गीतों से मेल खा रहे हैं, यानी यूं कहें कि अब हमारी पसंद मिलने लगी है। यही तो होता है संगत का असर, हमें आपकी संगत का असर हो गया है, या यूं कहें कि आपको हमारे साथ रहने का असर है कि हमारी पसंद मिलने लग गई है। तो बस आज के गीतों में रे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बताइए कौन से गीत हो सकते हैं वो। आपने बहुत सारे गीतों को बताया भी है और उसका जिक्र हम करने भी वाले हैं, लेकिन हाँ हम आपको ये कहना चाहते हैं कि फिल्मी गानों में हमारे गीतकारों ने अलग अलग प्रयोग किए हैं और ये प्रयोग बहुत सफल भी हुए हैं। आज के सभी गीतों में रे का संबोधन है ना। कहते हैं कि हिंदी और उर्दू साहित्य का एक बहुत ही काव्यात्मक और भावनात्मक तरीका है ये, जिसमें हम किसी निर्जीव वस्तु, विचार या खुद के मन को सीधे पुकारते हैं तो उसमें संवाद करते हैं और कहते हैं सुन रे, है ना। बस इन्हीं गीतों को आज हमने चुना है जहां गीतकारों ने उसमें खुद से, किसी वस्तु से, किसी विचार से या किसी अपने से सीधे संवाद किया है रे के माध्यम से, जैसे कि सूरज रे जलते रहना। तो सुनिए आज का ये पहला गीत।

तो देखा आपने सूरज रे जलते रहना, कितना खूबसूरत गीत। हेमंत कुमार की आवाज थी, हरिश्चंद्र तारामती फिल्म का नाम था, कवि प्रदीप की रचना थी ये, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आपने सुना इस गीत को और महसूस किया होगा कि यहाँ कवि प्रदीप प्रकृति के सबसे तेजस्वी तत्व सूरज से बात कर रहे हैं और उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। सूरज रे जलते रहना, बुझना मत जलते रहना, कितना खूबसूरत तरीके से गीतकार ने इस गीत को लिखा है ना। हमारी श्रोता लिखती है कि कोई चीज खो जाए और ना मिले तो मन कैसा उदास हो जाता है, मन का रेगिस्तान उसी पल सूख जाता है। लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, पर ऐसा नहीं होता। इंसान नियति के आगे झुककर जीने को बाध्य है, और जब हम जानते हैं कि हाल कैसा भी हो जीना तो पड़ेगा ही, तो क्यों नहीं जीवन थोड़ा हंस कर और थोड़ा भूल कर जिया जाए। जीवन को जितनी गंभीरता से लिया जाएगा उतनी ही पीड़ा होगी। इसे कुछ इस तरह से जियो कि यह उम्र एक सड़क है और हम सिर्फ चलने वाले हैं, हमें सिर्फ चलते जाना है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की इस आपाधापी में अक्सर मन का सागर उथला और शांत हो जाता है, उम्मीदों का किनारा छूटता सा लगता है और आत्मा एक सुकून भरी छांव की प्यासी हो जाती है। ऐसे में खुद को दोष देने के बजाय जरा उस वृक्ष को देखिए जो खुद तेज धूप सहकर पथिकों को शीतल छाया देता है। यही इस नश्वर जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सार है, दूसरों के जीवन में प्रेम और प्रकाश को बांटना। वहीं एक श्रोता ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बात कही है कि अगर कोई ये पता लगा ले कि मन की उत्पत्ति कैसे हुई तो मैं उसे वैज्ञानिक कहूंगी। सब कहते हैं मन मेरा है, मन मेरा है, लेकिन मन क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई और ये किससे बना है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका उत्तर नहीं मिलेगा। मन की उत्पत्ति निरंतर बदलती रहती है, इसलिए कोई नहीं बता सकता कि ये कैसे अस्तित्व में आया। मन को ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों दोनों के बीच कड़ी यानी मध्यस्थ माना गया है। अंतःकरण के चार भाग, अंतःकरण के चार अंगों में से मन एक है। शेष तीन बुद्धि, चित्त और अहंकार। कार्य मन का मुख्य स्वभाव है, संकल्प विकल्प, चंचलता दुविधा और इच्छाएं पैदा करना। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मन के अंदर भी एक रेगिस्तान होता है, बाहर भले हरियाली हो लेकिन अंदर सूखी और गर्म रेत। मन का रेगिस्तान पानी नहीं मांगता, वो मांगता है बस इतना कि कोई उसे समझे बिना, जज किए बिना उस उदास मन को बस वो जो थक गया है मुस्कुराते उसे मुस्कुरा कर दे।

के उदास मन के भीतर भी एक कोना होता है जहाँ उम्मीद की एक बेल जिसे सींचना पड़ता है खुद से बात करके, खुद को समझ के और बेवजह खुद को ही गले लगाकर। आपने बहुत सारे गानों का जिक्र किया है, जो इसमें से आपका एक गाना हमसे मिलता है, सूरज रे जलते रहना। तो आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, शब्द रे।

आशा भोसले मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था तीसरी मंजिल। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। कितनी प्यारी इल्तजा कर रही है महबूबा अपने महबूब से, ओ मेरे सोना रे। जी तो आज के दो सवाल नोट कर लीजिए। वैसे तो आपने अपनी टिप्पणियों में बहुत सारे गीत लिखे हैं जो हमारी गीतों से मेल भी खा रहे हैं और उसके अलावा भी गीत लिखे गए हैं, तो वही हमारा सवाल है कि रे का ये प्रयोग किन किन गीतों में हुआ है, आप बताइए। जैसे ही आप बताएंगे हो सकता है आपकी पसंद हमारी पसंद से और मेल खा जाए और इसके अलावा कुछ अन्य गीत भी हमारी नजर में आ जाए। तो रे का प्रयोग यहाँ और फिल्मों में किन किन गीतों में किया गया है इसका उल्लेख आपको करना है, कम से कम चार या पांच गीत। और दूसरा सवाल ये है कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी गीतकार जब लिखता है जैसे सो नारे सूरज रे, ये क्यों और कब। जैसा कि मैंने पहले कहा भी था, आप अपनी कल्पना से बताइए, अपने भावना से बताइए कि रे का ये काव्यात्मक रूप गीतकार कब कब गीतों में किस रूप में इस्तेमाल करता है। अगर वो कहता है सूरज रे चंदा रे मन रे तो क्यों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइएगा कम से कम शब्दों में।

0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत आधुनिक अंधी दौड़ की मरीचिका का उल्लेख करते हुए जीवन के दर्शन को बयां कर रही है। अंततः इस मृत तृष्णा का सुखांत सूर्य की उपमा संग प्रदान कर सुखद उपसंहार।
1: सुना सुना सुना गा है उबा शहर ओडिसा वासिंक पाई खुशी रा खबर
2: कौन कहुनु
1: छातरे सोलार पैनल लागिबो 1,38,000 पर्यंत सब्सिडी भी मिलिबो
2: आउ इलेक्ट्रिक बिल
1: विद्युत बिल संचयर नुआ संभावना आनिछि पीएम सूर्य घर मागणा बिजुली योजना।
3: आम राज्य रे एबे स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर कार्यक्रम आरंभ होई जायछि। एथिपाई 30 मई 2026 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी माने प्रत्येक घर को घर जाई प्रति निर्वाचकंकु दुईटी परिगणना फॉर्म देबे। फॉर्म गुडीकु voters.eci.gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड करि परिबे। फॉर्म दुईटी पूरण करबा परे एहाकु बीएलएमक निकटरे दाखल करंतु एवं तांकठारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करंतु। अधिक सूचना पाई वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को कॉल करंतु किंबा वोटर सर्विस पोर्टल किंबा ईसीआई नेट आप रे बुके कॉल विथ बीएलओ सुविधार उपयोग करंतु। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांक द्वारा जनहित रे जारी।
4: आरंभ करजो कार्यक्रम नारी महला।

0: नालिका चाउ संखा पिंदे दियो मंगन हांडी से बसेबे परा
1: हौ हौ अपा जाओ जल्दी साडीटा पाल्टी पके आसो सुली बहु सेरे रंडी छोडी छि परा जाओ जाओ मंगन हांडी बसे सारले जाई चो कथा
2: चल चल चल चल ए सुली बहु अरे हे अरे सियार सब कोन करत अनुकान जली बंधा हबो कि नाही रंजुआ तो बर बेसाई बाहरी बसिलानी हालो लती देखिलु देखिलु तु बरुजु भाईर बाहागर फोटो देखिछु परा आम रंजुआ ठीक ता बड़ा पापरी देखा जाउनी
3: हाँ मननी अबिकल से एमिति दिसुची
1: हाँ तो सतरे ठीक तांकुरी भलिया
4: अप्पा तम दियर कहले तमे आज बर अंजलि बांधिबो ये सबुबले परा कहंती रंजन कुआडे आम पुओ नुह तम पुओ
1: हाँ लो सर सान भाईर पुओ किए आ बड़ भाईर पुओ किए
4: हाँ
1: तू तो रंजन को दस मास दस दिन गर्भरे धरीचु ए आंजुली टेका पाई जन्म कला मार केते लोभ से कथा केवल मु ही बुझी
5: हे भगवान ए सब कौन होछि ठी एटा ही मो घर मु ए घर रो बड़ बहु ए मानकर एते फल पाइबा एते स्नेह श्रद्धा ए सब कौन स्वप्न ना सत ए घरे जे सी नाहंती ए कथा विश्वास होनी एमानकर स्नेह ममतार डोरी रे मु बांधी हे जाउची हां रंजन मो पुओ रंजन रंजन मो पुओ बड़ बेस साजी गला बेले ता पछपटटा अबिकलता बड़ बापा परे दिसुथिला मो मुंडो कोन हे जाउची मु कोन करबे मो मुंडो
2: कथा कह कह बड़ बहुटा मोर तले पड़ी गला ना कोन ल अरे के कोठी अछ पानी मुदे चंचल आनो मो बहु रे देह झुला मारि जाउ सकाल उपास थिबो अरे तमु सब सुबुच ना नाही मो
1: नाही नाही बो नाही बेस्त हो नि बो मोर किछि हेनी खाली खाली मुंडोटा टिके घुरे दिला त सेति पई टिके बसी पड़िली
2: नाही नाही तू खंजा को चालिलु मा पणा पाणी कोन टिके पी देबो उपास व्रत रो अभ्यास नाही त सेति पई एमिति हैला आ धर मा हाथ
1: नाही बु चलो चलो मु किछि हेनी मु निजे जाई परिबी

0: BCCI Secretary Devajit Sekhia for deciding the squad for the tours of Ireland and England and the Asian Games in Japan, as well as India A's tour of Sri Lanka multi-day games at the BCCI headquarters in Mumbai today. India will face Bangladesh in the final of the SAF Football Women's Championship at Madgaon, Goa today. The match will be held at 6:30 p.m. Earlier, India secured its place in the final by defeating Bhutan 1-0 in the semi-finals. India has won this title 5 times so far. In hockey, India will face host Japan in the final of the Men's Under-18 Asia Cup 2026 in Takamigahara in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. Earlier, India beat its arch rival Pakistan 5-3 in the second semi-final in a high-scoring contest. An Indian benchmark indices extended their losing streak into the second consecutive week, weighed down by persistent global headwinds. The Reserve Bank of India's supportive liquidity measures and currency stability initiatives provided some support to market sentiment, but a downward revision in growth projections dampened investor confidence. During the week, the 30 share Sensex at BSE lost 533 points to close at 74,243. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi holds meeting with his Economic Advisory Council to further boost India's economic growth. RBI simplifies rules for FPIs in government securities to make investment in India easier. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. CBSE extends last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In Punjab, at least 9 people killed after a vehicle collides with a truck on Firozpur Fazilka Road this morning. IMD issues red alert for heavy rainfall over Keralam and Mahe till tomorrow. And in cricket, Shreyas Iyer replaces Suryakumar Yadav as India's new T20I captain, Vaibhav Suryavanshi included in squad for first time. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है एक रिपोर्ट
3: वित्त वर्ष 2025-26 में

0: में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल है। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: Partnership that we have with Nepal.
1: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे

0: समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास की एक नई युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
3: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत

अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने दो विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ऑस्ट्रेलिया सैयर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ଆକାଶବାଣୀ କଟକ।
1: अब नींद कहाँ।

किशोर कुमार की आवाज में हम आपको फिल्म पेइंग गेस्ट का गीत सुनवा रहे हैं। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार सचिन देव बर्मन हैं।

देते हैं हसीनों को सलामी। गुस्सा न कीजिए, जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब।

भी है अब है तुम्हारा। इधर देखिए नजर फेंकिए, दिल लगी न कीजिए साहब।

0: तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा।
1: और आइए अब सुनते हैं दत्ताराम का संगीत, हसरत जयपुरी की रचना, लता मंगेशकर और मन्ना डे की युगल स्वर। फिल्म का नाम है कैदी नंबर 911।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है हिल स्टेशन, गायिका हैं लता मंगेशकर, बोल हैं SH बिहारी के और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है मन चाहे गीत।

0: बन जाएगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।

0: मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत।
4: इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमें खत लिखा है, आप हैं अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर। ये खत हमें मिला है अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। और ये खत हरियाणा से सेक्टर 18 जगाधरी से लिखा है विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी ने। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म महबूब की मेहंदी का गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं। शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा। ये खत हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाणे, अर्चना गोंडाणे, प्रणय।

प्रसिद्धि प्रतिभा गुणानिका और कोटवा नारायणपुर से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत। किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है अभिमान, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत SD बर्मन का।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं आप सबकी पसंद पर आधारित कार्यक्रम मनचाहे गीत। आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म का नाम है अमरदीप। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और आशा भोंसले, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीत दिया है सी रामचंद्र ने। सुनने की ख्वाहिशमंद है आप सभी। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री साहू ने, और दत्तरेंगी भाटापारा से ये हैं हीरामणि वर्मा। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये दुगाना।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। वरुण जौलका से महेंद्र सरकते, विजया सरकते, मिलिंद सरकते, और ये खत है आपने लिखा है गुजरात से नूर मोहम्मद लखाणी, जुबैदा खातून लखाणी, विहान लखाणी ने। भामेश्वर से सुनना चाहते हैं सिराज, हिना, रुबीना और इनके परिवार वाले। इसी गाने को सुनना चाहते हैं महेंद्र सरकते और उनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की है और तर्ज राहुल देव बर्मन की।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था कटी पतंग। और अब आप सुनना चाहते हैं रवि के संगीत निर्देशन में हसन कमाल का लिखा गीत, आवाज सलमा आगा की और फिल्म का नाम निकाहा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मुसर्रफ राज खान, अमजद अंसारी, दीपक वाल्मीकि और इनके परिवार वाले इसी गाने को सुनना चाहते हैं। शेगांव बुलडाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले और इनके परिवार वाले

ये खत हमें मिला है अंबेडकर सागर मध्य प्रदेश से। रामसखी परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, टुनटुन और इनके परिवार वालों का। और आप हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, कलड़ा रिसोर्ट से आप हैं सानवी सरवत और इनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, आवाज सलमा आगा की और ये फिल्म है निकाह।

0: रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसल कमाल का लिखा ये गीत सुना। आवाज सलमा आगा की थी और फिल्म का नाम था निकाह। इस गाने के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहेगी
0: और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। आज आप इस नाटक का पहला भाग सुनेंगे।
1: नाचो।
2: नहीं, नहीं।
1: मैं कहता हूं तुम्हें आज भरे दरबार में नाचना होगा।
2: खुदा के लिए
1: कोई रहम नहीं, नाचो।
2: नहीं, नहीं, नहीं। इन मुगल शहजादियों से भला ये कैसे हो सकता कि ये आज लाल के लिए किस भरे दरबार में नाचे।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूं। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
1: मैं कहता हूं नाचो। गुलाम, इनके कोड़े लगाओ और भरे दरबार में नचाओ।
3: ये गुलाम कादिर रोहेला का मुगल शहजादियों और बेगमात पर कितना जुल्म है।
4: हाँ।
3: आलम शाह सानी ने इन्हें पाला पोसा और ये उसी की आंखें फोड़कर आज हरम की बेगमात को दरबार में नचा रहा है।
4: ये सब मंसूर अली की तगा और अंग्रेजों की साजिश से हुआ है।
3: अंग्रेज जब हिंदुस्तान को हड़पना चाहते हैं।
4: नहीं, जब तक हिंदू मुस्लिम सिख और मराठे बादशाह के साथ हैं ऐसा नहीं होगा।
3: तुम ठीक कहते हो, आज ये सब गुलाब की ऐसी पंखुड़ियां हैं जो गुलाब के इस फूल की हिफाजत के लिए मैदान जंग में आ गए हैं।
4: हाँ, ये गुलाब की पंखुड़ियां नहीं बल्कि तलवार की धार है जो विदेशी ताकत को काट कर रख देंगी।

0: यह जहांपनाह इन चालबाज अंग्रेजों से किसी भी नवाब की नहीं पड़ सकती। ये तो बंगाल में भी ऐसा नवाब चाहते हैं जो इनके इशारों पे नाचे।
1: अब मीर जाफर को फिर मसनद नशी कर दिया और कासिम को बंगाल से खदेड़ दिया।
0: जी हां आलमपना, अंग्रेज तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूरी तौर से हावी हो जाना चाहते हैं।
1: यही नहीं

0: और बनारस के राजा बलवंत सिंह भी मैं अपनी पलटन के हमारी इमदाद के लिए आ गए हैं। जर्मन कप्तान सैमरे भी अपने तोपखाने को एकदम मुस्तैदी से तैयार कर रहा है।
1: नवाब
0: जहां बना,
1: अगरचे शिकस्त दर शिकस्त होती रही है, ताहम हमारे फर्माबरदार सिपहदारान का अभी भी हौसला बुलंद है। हमारी सिपह वाकई दुनिया के लिए एक मिसाल है। देखो देखो, जिस तरह ये गुलाब का फूल पंखुड़ियों की वजह से इतना दिलकश बना है, उसी तरह हमारी फौजों में भी हर कौम और मजहब के बहादुर मिलकर एक कुल की शक्ल में काम करते हैं। इसी पर हिंदुस्तान को फख्र है।
0: जी हां आली मकाम, इसमें कोई शक नहीं है।
1: पंखुड़ियां गिरती हैं, मुरझाती हैं, लेकिन नए गुल और भी खूबसूरती से जहूर में आते हैं। चंद गद्दार मुरझाई पंखुड़ियों की तरह भटक जाते हैं, यही बदनसीबी है। इसके बावजूद कई राजा, नवाब और अमीर नई पंखुड़ियों की तरह हमारी इमदाद के लिए आन पहुंचे हैं। इस दफा अंग्रेजों पर पूरी ताकत से हमला करना है, ताकि हिंदुस्तान से इनका नामोनिशान हमेशा के लिए मिट जाए।
0: जी हां आलमपना, हुजूर के इकबाल से इस दफा हमारे जासूस भी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। नवाब मुनरुद्दौला का जासूसी दस्ता खबर लाया है कि मेजर हेक्टर मुनरो की फौज में कुल 6-7 हजार सिपाही हैं और सिर्फ 20 तोपे।
1: फिर तो हमारी इतनी बड़ी फौज और 100 से ज्यादा तोपों के मुकाबले में उनका ठहर पाना नामुमकिन है। हम जल्द से जल्द इन सरकशों को सबक सिखाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से इनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं।
0: जी आली कद्र, हमें कप्तान सैमरे ने बताया है कि हमारी 133 तोपें बिल्कुल सही हालत में हैं, और उधर मीर कासिम और उमराव गोसाई के जासूसों ने भी काबिले तारीफ इंतजाम किया है। उन्होंने अंग्रेजी फौज में कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो ऐन वक्त पर वहां के अफसरों और सिपाहियों को हमारी तरफ मिल जाने को उकसा रहे हैं।
1: वाह, बहुत खूब, कुछ कामयाबी हासिल हुई।
0: जी हां सरकार, हमें पुख्ता खबर मिली है कि करीब 70-80 छोटे बड़े अफसर और नायक और करीब 1000 सिपाहियों की पलटन ऐन वक्त पर हमसे आन मिलेगी।
1: वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। अब हम शर्तिया फतेयाब होंगे, इन 5-7 अंग्रेजों को मुल्क से निकाल बाहर करेंगे।
0: बेशक आलमपना, बेशक इस बार हम यकीनन कामयाब होंगे और इन 5-7 अंग्रेजों को मुल्क से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जहां पना, अगर इजाजत हो तो एक अहम मामला और हुजूर के इल्म में।
1: जरूर नवाब, बोलो बोलो।
0: आली कद्र, वो अंग्रेज लड़की जिसको हुजूर ने पनाह दी थी, उसका रवैया इन दिनों कुछ अजीब सा नजर आ रहा है।
1: तुम्हारा मतलब एमली से है? क्या हुआ?
0: हुजूर, वो शुरू के कुछ महीनों में तो काफी संजीदगी और बुर्दवारी से।
1: और अब क्या हुआ उसको?
0: हुजूर आला, पिछले एक माह से उसकी हरकतें काफी हैरत अंगेज हो चली है। वो शाही फौज के खेमों में मुख्तलिफ सिपादारान, हुक्काम वगैरह से अक्सर बड़ी बेतकल्लुफी से मिलती रहती है।
1: नवाब शुजा, वो भोली लड़की जरा चुलबुली जरूर है, फिर इन अंग्रेजों की तहजीब में औरतों को काफी आजादी है।
0: वो तो वजह है जहां पना, लेकिन हाल ही में मेरे कुछ खास हरकारों ने खबर दी है कि ये खेमों से दूर जाकर अंग्रेज घुड़सवारों से भी गुफ्तगू करने लगी।
1: ये तो बहुत संगीन मामला है।
0: जी हां आली मकाम, जब से हम लोग बक्सर के नजदीक पहुंचे हैं, उसकी सरगर्मियां और भी बढ़ गई।
1: इस वक्त वो कहां है?
0: वो इस वक्त शाही हरम के खेमे में है, यहां से तकरीबन 4-5 कोस।
1: उफ नवाब शुजा, इधर सामने मेजर मुनरो अंग्रेजी सिपह के साथ आगे बढ़ रहा है, उधर ये लड़की न जाने क्या क्या गुल खिला रही होगी।
0: आलम बना, मैंने ख्वाजा सराओं और कुछ चुनिंदा नायकों

0: ताकीद कर दी है कि उस लड़की पे कड़ी नजर रखे, मगर हुजूर पता नहीं कि इससे पेशतर क्या किया हो उसने।
1: मगर हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: जब तक कुछ पुख्ता सबूत न मिले आलम पनाह को जहमत देना मुनासिब न होता, और इसके अलावा हुजूर इस जगह के लिए कूच भी कर चुके थे।
1: शुजा, ऐसे मशकूक शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, बाद तफ्तीश असलियत का पता लग जाता।
0: हुजूर, मैंने आपके खौफ के मारे ये जुर्रत करना मुनासिब न समझा।
2: हुजूर, बेगम साहिबा बारियाबी की इजाजत चाहती हैं।
1: कौन? सकीना बेगम? यहां फौरन भेजो।
2: जी जहां पना।
3: आलम बना, गुस्ताखी मुआफ फरमाए।
1: हाँ हाँ, बोलो बेगम, यहाँ क्यों कर आना हुआ? हरम से मैदान जंग में?
3: आलीजा, मैंने एमिली को गिरफ्तार करने की जुर्रत की है। वो कुछ गोरे घुड़सवारों से गुफ्तगू कर रही थी, कुछ कागजात भी।
1: उफ सकीना, घुड़सवारों को भी गिरफ्तार कराया या नहीं?
3: पहले सिर्फ दो थे, भागते भागते एक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा कुछ कागजात लेकर भाग रहा था तो हमारे जवानों ने उसका पीछा किया, मगर आगे जाकर 20-25 गोरे सवार और मिले और बंदूकों के फायर करते हुए सब भाग निकले। वक्त की नजाकत देखकर मैं खुद चली आई।
1: दूसरा सवार पकड़ा नहीं जा सका?
3: जी नहीं आलमपना।
1: हो, वो कमीनी कहाँ है?
3: जी, बराबर वाले खेमे में ख्वाजा सरा मंजूर अली की हिरासत में है।
1: नवाब शुजाउद्दौला को बुलाओ।
0: जहां पना ने याद फरमाया।
1: हाँ नवाब शुजा, तुम्हारा शुबा ठीक मालूम होता है। उस बदसाद को सकीना बेगम ने गिरफ्तार तो कर लिया है, एक आध कागज भी बरामद हुआ है, मगर दो में से एक घुड़सवार भाग निकला, कुछ कागजात भी ले भागा। अब उस सराम खोर एमिली को कोड़े मार मार कर कुल तफसील मालूम करो और हमें बताओ। बराबर के खेमे में है वो बदसाद।
0: जी आलीजा, हुक्म की तामील होगी।
1: बेगम, तुम बहुत थक गई हो, आराम कर लो। इस मामले की तहकीकात हो जाए तो अपने खेमे की तरफ वापस चली जाना, यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं।
3: जी नहीं आलमपना, मुझे आराम की कतई जरूरत नहीं। फिर जहाँ हुजूर का कयाम हो वहाँ मुझे भला क्या खतरा हो सकता है?
1: नहीं बेगम, तुम्हारी जल्द से जल्द वापसी ही लाजिम है।
3: जैसी आलमपना की मर्जी।
0: आलमपना, मैंने तहकीकात कर ली है, अफसोस है कि बहुत खौफनाक सूरत बन गई है। एमिली ने बामुश्किल तमाम कबूल किया कि वो अंग्रेजी जासूस है। उस कागज में अंग्रेजी सिपाही के कुछ लोगों के नाम हैं जो हमसे मिल जाने के लिए तैयार थे, मगर इससे पेशतर वो हजारों नामों की फहरिश्त मेजर मुंडो को भेज चुकी है। कोड़ों के मार से वो लहूलुहान हो गई, तब कहीं उसने जाकर।
1: उस कमबख्त कमीनी को हाथियों से कुचलवा दो। शुजा, ये हाँ। ये क्या है?
0: जहां बना, ये तो अंग्रेजों की तोपें। पता नहीं एक एक धमाके में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा होगा।
1: उफ नवाब, तो क्या हमारे जासूसों की कुल मेहनत बेकार गई? क्या वो हजारों को मार डालेंगे?
0: हुजूर, मालूम तो ऐसा ही होता है, धमाके पे धमाके हो रहे हैं, हजारों की मौत के पैगाम हैं ये धमाके। हुजूर, हमारे सिपाह पे न जाने कौन कौन गद्दारी पे आमादा होगा।
1: शुजा, फिर भी हमें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए। सकीना बेगम की वापसी का इंतजाम कर दो और फौरन जंग के लिए कूच का ऐलान किया जाए, और उससे पेशतर उस अंग्रेज जादी को हाथियों से कुचलवा दिया जाए।

0: नवाब मुनीरुद्दौला, समझ में नहीं आता कि अभी भी हमारी गर्दिश और दुश्वारियों का दौर क्यों खत्म नहीं होता।
1: आलमपनाह, वक्त सबका बदलता है।
0: बक्सर की शिकस्त का कुछ और जायजा मिला?
1: जी हाँ, वही तफसील अर्ज करना चाहता था। आलमपनाह, हमारे करीब 2000 बहादुर मारे गए। हमारी तमाम तोपों पर मुनरों ने कब्जा कर लिया। सिपाहियों में मुर्तजा खां, मियाँ ईसा, यासीन वगैरह मारे गए।
0: ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
1: नवाब शुजाउद्दौला पूरे खानदान के साथ बरेली की तरफ चले गए हैं और नवाब मीर कासिम रोहेलखंड, हमारी बहुत सी सिपाह घायल हो गई है और बाकी भाग निकली है।
0: नवाब मुनीर, इस बक्सर की जंग ने तो हमारे हौसले पस्त कर दिए। अब कोई सूरत नहीं अंग्रेजों से लोहा लेने की। इतनी मुकम्मल तैयारी के बाद ऐसी शिकस्त फाश। सुना है कप्तान सेमरे भी बरेली की तरफ भाग गया है।
1: जी हाँ अली मकाम, सबको अपनी अपनी जान की पड़ी है। अवध का इंतजाम तो अंग्रेज कप्तानों ने संभाल लिया है, वो भी बड़ा जुल्म ढा रहे हैं रियाया पर।
0: तो फिर हमारी हालत बहुत ही नाजुक है इस वक्त। ताहम ये समझ में नहीं आता कि जनरल कार्निक ने हमसे मुलाकात की दरख्वास्त क्यों की है। अंग्रेज कंपनी का गवर्नर हमसे सुलह चाहता है। हमने उसे मुलाकात के लिए इजाजत का परवाना भिजवा दिया है।
1: सुना है हुजूर वाला, ये अंग्रेज नवाब शुजाउद्दौला से भी सुलह की कोशिश कर रहा है।
0: अंग्रेजों की चालबाजियां समझ में नहीं आती नवाब मुनीर।
1: बेशक आलीजा,

0: जयपना, मुझे आपकी राया इंग्लिश कंपनी का गवर्नर क्लाइव साहब ने आपके हुजूर में पेश होने का हुक्म दिया है। हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, ये नजर कबूल करें।
1: शुक्रिया। अंग्रेज कंपनी क्या उम्मीद रखती है हमसे?
0: उम्मीद? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ हुजूर को इलाहाबाद और खोड़ा के जिले देना चाहती है। जयपनाह का हिफाजत करना हमारा काम होगा, और आपकी वफादार अंग्रेज रियाय की तरफ से एक अफसर आपके पास रहेगा।
1: अफसर? वो अफसर क्या करेगा?
0: वो आपका खिदमत करेगा। अगर कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा तो अंग्रेजी फौज बुला लेगा और योर मैजेस्टी का मदद करेगा।
1: अच्छा अच्छा, इसके बदले में हमारी वफादार रियाय अंग्रेज कंपनी क्या चाहती है?
0: योर मैजेस्टी कुछ नहीं, बस एक फरमान, ओनली वन, शाही फरमान।
1: फरमान? कैसा फरमान?
0: जापना, बंगाल की दीवानी का फरमान।
1: बंगाल की दीवानी का फरमान? लेकिन बंगाल में तो तुमने मीर जाफर को नवाब बनाया है, फिर हमारे फरमान से क्या मकसद है?
0: यह मैजेस्टी, नवाब और शहंशाह में जमीन आसमान का फर्क होता है। सारा मुल्क का असली मालिक तो आप ही है। आपका फरमान हमारे लिए बहुत इज्जत का बाइस होगा। इसके लिए हुजूर का रियाया कंपनी हुजूर को 26 मेरा मतलब है 26 लाख रुपया सालाना खिराज अदा करती रहेगी।
1: लेकिन अंग्रेज कंपनी हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में भी मदद करेगी या नहीं?
0: जरूर योर मैजेस्टी, लॉर्ड क्लाइव साहब ने भी यही कहला के भेजा है, वो जरूर मदद करेंगे।
1: ठीक है ठीक है, हमें मंजूर है। तुम अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार कर लो, हम भी दीवानी का फरमान बहुत जल्द जारी कर देंगे।
0: शुक्रिया योर मैजेस्टी, फिर हमको इजाजत बख्शे।
1: इजाजत दी जाती है।

0: आज 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई।
1: जी आलम पना, इधर इस अंग्रेज कमांडर बारकर के दिनों दिन दिमाग बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे मुलाजिमों से बदसलूकी से पेश आता है, कहता है हम तुम्हारे बादशाह को 26 लाख रुपए वजीफा देते हैं।
0: अच्छा कमांडर तैनात किया हमारी हिफाजत को, एहसान फरामोशों ने 26 लाख सालाना देकर हमें खरीद लिया है। बंगाल की दीवानी से करोड़ों रुपए हासिल कर रहे हैं, उसका कोई एहसान नहीं।
1: हुजूर, वो कहता है कि हमारी इजाजत के बगैर कोई शाही मुलाजिम इलाहाबाद से बाहर नहीं जाएगा।
0: गोया हम शहंशाह नहीं, इस कमीने कमांडर के कैदी हो गए।
1: लेकिन जब आलम पना के हुजूर में पेश होता है तो वो मेमना बन जाता है, जमी बॉस करेगा, योर मैजेस्टी की रट लगाया जाता है।
0: मगर ये कमबख्त मेमने की खाल में भेड़िया है, भेड़िया।
1: अलीजा, अब तो मराठों के जवाब का इंतजार है। सैफुद्दीन खान को कई महीने हो गए माधोजी सिंधिया के पास गए हुए।
0: देखो क्या होता है। अब तो हमें जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचने की तमन्ना है। साबता खां किले पर काबिज है और उसका रवैया दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है।
1: जी आली कदर, वो
2: आलम पना, सैफुद्दीन ने पैगाम भिजवाया है कि मराठों ने हुजूर के शरीक दौलत होकर मदद की रजामंदी दे दी है। सिंधिया की फौजें रवाना हो चुकी हैं और यहां पहुंचने ही वाली हैं। उन्हीं की मदद से सैफुद्दीन मोहम्मद खान ने दिल्ली पहुंचकर जामा मस्जिद से हुजूर के शहंशाह होने का ऐलान भी कर दिया है।
0: वाह वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। मंजूर, सब सरदारान और उमरा से कह दो कि कूच की तैयारी करें।

लो नवाब मुनीर, ये क्लाइव का जवाब भी आ गया। वो हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में मदद करने के वायदे से फिर गया है। यही तो एक अहम शर्त थी सुलह की।

0: जहां पना अब दिल्ली दूर नहीं।
1: ये कौन सा मुकाम है मंजूर?
0: आलम पना ये मौजा धनौली है, यहां से शाहदरा करीब 4 मील है।
1: ओहो, तब तो दिल्ली आन पहुंचे। अरे ये इतनी शानो शौकत से किसका जुलूस चला आता है? मंजूर जरा पता लगाओ।
0: आलम पना ये आली जा वली अहद शाहजादे और बुजुर्ग बेगमे हुजूर के इस्तकबाल को आते हैं। जाब्ता खां हुजूर के खौफ से किला छोड़कर भाग गया है और उसकी सिपह भी सिर पर पैर रखकर भाग रही है।
1: वाह वाह, बहुत खूब।
0: और आलम पना सारा इंतजाम मुकम्मल है। अब हुजूर का जुलूस शाहदरा से दिल्ली दरवाजे होकर लाल किले में दाखिल होगा।
1: लगता है मंजूर आज हमारी मुरादें पूरी हुई और उम्मीदें भर आई।
0: हुजूर, वली अहद ने बताया है कि जाब्ता खां फौजें जमा कर रहा है।
1: वो है कहां? कहां तैयारी कर रहा है?
0: जी वो नजीबाबाद है।
1: ठीक है, दिल्ली में तख्त नशीनी के फौरन बाद हम उस पर चढ़ाई करेंगे और बगावत की सजा देंगे। हमने माधोजी सिंधिया से भी मशवरा कर लिया है, वो भी हमें पूरी इमदाद देने को रजामंद है।

गुलाब की पंखुड़ियाँ। अभी आप सुरेंद्र कांत के लिखे इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। निर्देशक मुमताज शकेब। आपको बता दें कि इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आज सुनिए पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया। जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: होया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलग गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी? तो फिर क्या किया आपने?
3: मैं जिंदगी

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया। टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: या बहुत बहुत शुक्रिया
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग दीवाने हैं जिनको डांस का डी भी नहीं मालूम लेकिन वो टेरेंस के दीवाने हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो श्रोताओं हैं और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया कि इतना प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार अपने आप को फील करवाता हूँ, और बहुत मैं कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं कि मैं इस प्यार का हकदार बनूं। सो
1: मैं आपको बताऊं, ये बात मैं जानता हूँ कि क्यों हैं आप इसके हकदार। उसका कारण सिर्फ आपका डांस नहीं है, आपकी शख्सियत है, आपका स्वभाव है, आपकी विनम्रता है, आपका प्यार बांटने का सलीका है।
0: शुक्रिया।
1: ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यारा भी बनाता है, और जिंदगी में काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी हैं, बहुत से आसमान छूने हैं आपको।
0: वो तो जरूर है। और अगर दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो जरूर बहुत सारे जो मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूं इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो जाए।
1: तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, और ये पहुंचेगी आपकी जन्म तारीख से।
0: हाँ।
1: जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा, और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ।
0: मेरा जन्म हुआ मुंबई में, और मैं आठवां बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप का नाम है जेवियर और मीडिया लुइस। डैडी मैंगलोर से हैं ओरिजिनली, लेकिन मुंबई में वो 10 साल की उम्र में आए और काम करने लगे, और मम्मी मुंबई से ही हैं। तो हम सभी 8 भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को, 10 अप्रैल 1975। तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 2020 में 45 साल की हो जाती है।
1: तो देखिए साहब, 45 साल के जवान, या यूं कह लीजिए नौजवान युवा डांसर के साथ मैं इस समय बैठा बात कर रहा हूं। तो टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में, जब आपका जन्म हुआ मुंबई में, कहां हुआ, कैसे आपका बचपन बीता।
0: हाँ।
1: और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है।
0: तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा जन्म हुआ मुंबई में। एक हम रहते थे एक छोटे से बस्ती में, चौल में, हरिनिवास चौल था, पठान चौल भी था, दो दो नाम थे उसके, और बड़ी बसी बस्ती थी। हमारे घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो बहुत प्यार मिला, और इट वाज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई सिर्फ एक थे नेबर्स, अदरवाइज इट वेरी कॉस्मोपॉलिटन जो ऐसा वाला फील था। किसी के भी घर में आना जाना, टीवी नहीं हुआ करता था तभी। हाँ। सिर्फ रेडियो हुआ करता था
1: उस जमाने में, तो था नहीं।
0: और लोग बोलते भी हैं कि यार आपने इतने इतनी चीज़ें सही हैं, आप कहाँ थे और कहाँ आए हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था मैंने, तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला, और लोगों का प्यार बहुत ज़बरदस्त मिला, और यही वजह थी, ये प्यार जो मुझे मिला ये मेरे डांस के वजह से मिला। और जब मुझे वो मिला, वो बेशुमार मिला, मेरे इर्द गिर्द जो नेबर्स थे या जो मेरे समाज के जो लोग थे, वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नज़र से देखते, क्योंकि मैं गाता था, एक्टिंग करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे या फिल्मों में, या डांस करता था। तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुलाया करते, आजा बुलाओ बुलाओ इसको, बुलाओ उसको बुलाओ, ये नाचेगा हमारे लिए।
1: तो क्यों ना अभी मैं भी कहूँ कि आज टेरेंस आए, अभी टेरेंस नाचेंगे तो नहीं, लेकिन गाना तो सुना सकते हैं।
0: वो जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, लेकिन बस मुझे स्टेज पर का बहुत बड़ा लगाव हुआ था, क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी। नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट ट्रीजस हाई स्कूल। तो मैं रहता था अंधेरी में, लेकिन क्योंकि मेरी माँ बांद्रा में रहती थी पहले, ओके, शादी होने के पहले, तो हमें भर्ती किया गया था एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट ट्रीजस हाई स्कूल। हम 4 भाई वहीं पर पढ़े। तो वो स्कूल में 6 साल की उम्र में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और आई थिंक सीनियर के एज में, नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5 साल का था। तो टीचर आई और उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे लोग, कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कंपटीशन में। किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा। और मेरे में बचपन से वो ऑलवेज थिंक कि पार्टिसिपेट करना है।

0: सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश एनवायरनमेंट में पला पड़ा. बहुत सारा तनाव था, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन थी, डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था. और कभी कभी बच्चों के लिए उनको कुछ पता नहीं कि कितना क्या अमीर है क्या गरीब है उनके. आई थिंक आई डिडंट रियलाइज दैट, आई वॉज जस्ट हैप्पी और मैं हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहता था. फिर दूसरी टीचर आई, बोला कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता, मेरा हाथ उठ गया. तो ऐसे करते करते मैंने 8 जो भी कॉन्टेस्ट थे, ड्रॉइंग सिंगिंग एलिक्यूशन, पार्टिसिपेट कर दिया. बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये कर दिया. उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन अभी अभी मैं कैसे सिखाऊं, मुझे तो ये सब आता नहीं है. तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूंगा. तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर लिया. तो मुझे पहला नंबर लग गया. ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ. और फिर जो तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी और जो मुझे पुरस्कार मिले, जब 2 महीने बाद प्रिंसिपल ने सर्टिफिकेट सब साथ में इकट्ठा, एक एनुअल डे होता है तो सब ही सर्टिफिकेट साथ में मिलते हैं उस दिन पर, तो मैं मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था. तो एलिक्यूशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब में मैंने भाग लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था. तो वो जो खुशी, वो जो हाई, जो नशा मैंने फील किया, वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है. तो मैं मौका ढूंढता हूँ कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा कि मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझे वाहवाही देंगे. तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया.
1: अरे इतनी चीजें याद हैं आपको बचपन की, तो वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था उस समय. चलिए गाइए, गाना तो बताइए.
0: तो वो अंग्रेजी गाना था, ओके, बोनियम.
1: Okay. Bonium का, okay.
0: Bonium, 1975 में तो एक गाना था, Brown Girl in the Ring, tra la la la la. So वो वाला गाना था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था. फिर हिंदी गाना जो गाना गाया था मैंने, वो पिक्चर थी एक हिंदी फिल्म की थी, जो शायद मेरे शादी का ख्याल,
1: सौतन.
0: तो वो पिक्चर मैंने, वो रेडियो पे चल रहा था 80s में, तो मैंने वो गा दिया, तो वो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया. तो ऐसे फिर अजीब दास्तां है. अजीब दास मेरी बहने रेडियो पे सुन के वो पुस्तक में लिखती थी, क्योंकि लिरिक्स सबको चाहिए था, तो वो लिखती थी. तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं वो दोनों, वो हर गाना जो आता था, वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी नहीं था, सिर्फ रेडियो, तो वो हम 2-3 बार सुनते थे रात, ताकि वो वो लव्स जो बोले गए हैं वो सही सुने हैं कि नहीं. तो वो भी गाते थे, हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था घर में. तो वही याद हो जाते थे. तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीब दास्तां के लिए मैंने बहुत बार पुरस्कार बहुत बार मिला है, और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यार लगता है. तब मेरी आवाज एक छोटे बालक की तरह था, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पतली, एंड इट वाज सूटिंग दैट सॉन्ग. फिर बाकी जाके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेन नहीं हुआ था, और डांस का शौक बहुत कभूत चढ़ गया था, और बहुत वाहवाही मिल रही थी, तो मैं उस लाइन में घुस गया, डांस की लाइन.

0: देखिए दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है,
1: लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब हूँ।
0: लेकिन हमारे
1: मैंने कुछ
0: तो...
1: भी मैंने कोई भी चीज जिंदगी में जो जो नो जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते हैं मैंने कभी नहीं किया। जो चीज लोग नहीं कर रहे मुझे वही करना है।
0: लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है,
1: क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना।
0: हाँ।
1: आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं, लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है, सिंपल पढ़ाई करो, जाओ गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और यू नो सुखी रहो। तो उनके लिए ये सब चीजें अमीरों का शौक है, सिंगिंग डांसिंग। मुझे बहुत मार नहीं पड़ती थी, लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत कर, चाहे तुम फर्स्ट भी, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में भी मैं होशियार था, तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई। तो मैं बहुत झगड़ता था कि नहीं, मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, और मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज्यादा लेकर आऊंगा। लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं बहुत थोड़ा यू नो जिद्दी भी था, तो और रिजल्ट भी लेकर आता था, पढ़ाई में मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों ना बोल रही हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करता है वो और हमारी स्कूल की शान है ये। तो फिर मेरी माँ चुप हो गई वहां से। फिर मतलब अगर तू कुछ भी हुआ फिर मेरे पर नहीं आना चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: बाकी के भाई बहन कोई शौक नहीं था डांस या म्यूजिक का?
1: आई थिंक शायद होता भी तो आई थिंक वो इतने यू नो आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं था, या मुझ में ना बचपन से लेकर क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा चढ़ गया, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। फिर इसकी वजह से वो आगे बढ़ गया। तो मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा लकी हो गया, वो एक तुक्का ना एक लॉटरी पहले ही लग गई, तो उसकी वजह से वो ना एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, चाहे आप लड़खड़ाएं और चाहे आप उसकी दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा भी उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया है। एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गया ना आप, तो वो डर जो होता है ना
0: वो निकल जाता है।
1: तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है यू नो स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने। बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोगों से डरते हैं, वो डर मेरा चला गया। तो वो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर, वो अपने आप को यू नो एकदम यू नो जो भी है आपके अंदर जो टैलेंट जो फन है

वो बताना कभी कभी लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है, लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देखकर कि उनके विचार क्या होंगे, वो जजमेंट क्या होगा, अगर वो सेल्फ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है, तो मैं शायद उसमें बच गया तो

0: टेरेंस, अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम मध्यम वर्ग के लोग थे तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि अब मेरा काम हो गया है, तो मेरे डैडी ने 5 साल और बढ़ा दिए और बोला कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए कुछ भी, लिए अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे उन सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज़्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूँ, तो मेरे एक दोस्त ने, उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देती थी, उनको डांस सीखना था तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, यू नो, कॉलेज फीस और सभी जो यू नो चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए, उससे ज्यादा मैंने बहुत कुछ पाया तो मेरी लॉटरी लग गई।
0: यानी ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल
1: होगी? 17 साल की थी।
0: यानी उस उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं?
1: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था, तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया। तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी 4 बहनें थी, मेरे 3 भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे, तो जब भी उनका उनके पास टाइम नहीं होता था तो उन लोगों ने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे उनके, आप ले लो, यू नो, ये आप पढ़ा दो और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए।
0: अब जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान के बारे में दिलचस्प, मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है।
1: अच्छा।
0: इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुईस।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप, चलो आप डांस सिखा रहे थे लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे यार, सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
1: एग्जैक्टली, क्योंकि देखो मैं पढ़ाई में होशियार था तो मैं साइंस, मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था तो मेरा 88% निकल गया था, फिर मैं 3 मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ रहा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए, फिर वहां से छोड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया क्योंकि पैसे अच्छे रहे थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट भी फिनिश किया 3 साल का और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब जो नौकरी लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने। मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूं तो मैं शायद सफल हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप

0: डरता कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई मैं हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू इतना होशियार बच्चा था, तू डॉक्टर बनने वाला था, और फिर तू माइक्रोबायो बायोस्ट्रीमिया, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुमने, तुम अभी डांसर बन रहे हो। तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी, क्योंकि हमारे परिवार में डांस के एक एक लग्जरी है, ये यू नो ये अमीर लोगों के लिए यू नो शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें। तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का, और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक मतलब यू नो आइदर टीचर है या यू नो फार्मेसी में है, या इंजीनियर है मेरे भाई, या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है, मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूँ। तो उन्होंने सब ने ना कर दी, मैंने बोला कि नहीं आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है करना है, वैसे भी मैं आपसे ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा। तो सब लोग मेरे दो मेरे भाई बहन थे, तू गिरेगा, तू तू तू समझ नहीं पा रहा है कि ये फिक्स नहीं है, आज तुम्हारे जो लोग तुमको काम दे रहे हैं घर घर में, वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, बोलेंगे अभी खत्म, तो तुम क्या करोगे? ऐसे क्यों दूसरे आएंगे? ऐसे अगर तुम्हारी बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे? ये सब बहुत ही सेंसिबल सवाल
1: जाहिर है
0: थे,
1: कि हर तरह से
0: हर तरह से
1: तोड़ने
0: मतलब,
1: की कोशिश थी।
0: और मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे थे 10 लोग कि नहीं ये मत करना, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो सब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, उनके पास एक फिक्स्ड करियर है।
1: देखिए, एक बात होती है टेरेंस, मैं बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है,
0: करेक्ट।
1: वो हर चीज से डरता है
0: हाँ
1: क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास जो रहता है वो खोने
0: करेक्ट
1: के लिए
0: हाँ
1: वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो
0: हाँ अगर
1: जाएगा।
0: आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम
1: कोई
0: नहीं है,
1: प्रॉब्लम
0: क्योंकि
1: नहीं।
0: लोग सपोर्ट मिलता है, लेकिन
1: हाँ
0: हमारे, मेरे डैडी तो मजदूर हैं, उनको सिर्फ, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ कि पढ़ा लिख कर मेरा बच्चा आगे जाए वो ही खुशी
1: ये
0: है।
1: बहुत
0: हाँ
1: बड़ी बात है ना। और देखिए, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे,
0: करेक्ट
1: आगे बढ़े। हर बाप
0: करेक्ट
1: की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि
0: हाँ
1: उसका बेटा उससे आगे जाए।
0: बढ़े हाँ
1: बस आपने 2 कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए,
0: खुश
1: उनको
0: हो
1: तो
0: गए
1: खुशी मिल गई।
0: हाँ, लेकिन को वही
1: लेकिन
0: वही चिंता थी कि अरे तू तो डॉक्टर बनने वाला था, फिर तूने माइक्रोबायो बायोलॉजिस्ट में किया, फिर तूने होटल मैनेजमेंट किया, तू फर्स्ट भी आया यहाँ पर, तो फायदा क्या इतना पढ़ के, तू इतना पढ़ता है तू फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गया, लेकिन तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई? तो
1: चलिए,
0: मेरे डैडी को समझ में आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूं, और वो
1: फाइनली
0: बोली
1: फिर आपके मदर फादर खुश
0: अग्री
1: हुए कि नहीं?
0: नहीं, वो बाद में बहुत सालों के बाद खुश हुए, बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी मतलब 7-8 साल बहुत, जब मैं फिर मैं जब एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर? तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आना चाहिए। तो मैंने यू नो एक स्टूडियो लिया, पैसे खर्च किए, जो भी इकट्ठा किए थे, पूरा मेरी मेरी पूरी जवानी जो मुझे पता नहीं कहाँ गई, मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया, मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है अपने करियर में लगा दिया, और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को, अगर मैं किसी के घर पे जा रहा हूँ तो वो उनकी सहूलियत होती है ना कि मैं उनके घर पे आ रहा हूँ, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है,
1: एक और
0: लेकिन
1: बात होती है
0: हाँ
1: टेरेंस, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, बिजनेसमैन नहीं
0: नहीं होता, तो
1: होता।
0: वो अकल बाद में, फिर
1: वो
0: जब जमीन
1: सीखना
0: पर
1: पड़ता
0: उतरा, मैं
1: है।
0: उड़ रहा था कि मेरा ऐसा होगा,
1: और
0: मैं सच में ना जो मैं 21-22 साल का था, मैं मेरे सपने, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होगा, फिर मैं बड़ा शो करूंगा, फिर लोग मेरे मेरे पास आएंगे, देखें कि मैंने कितना अच्छा काम किया है, और यू नो तो ये बड़े बड़े मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते मेरे दिमाग में, फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और बोले कि मेरी फिल्म करो, तो मेरा दिमाग सपनों में रहता था।

0: अरे टेरेस, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकाल दिया, हाँ। रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन में सुना करते, हाँ, थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके जहन में,
1: जरूर।
0: लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फहरिस्त, हाँ, पूछी जाए,
1: हाँ,
0: तो किस तरह के गाने होते थे?
1: मेरे
0: किस मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना, तुम हम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी सी उदासी में घर से निकले, तो कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती का?
1: बहुत सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था,
0: लोकल ट्रेन,
1: और मुझे, सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे
0: हैंड हेल्ड पकड़ के
1: मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है,
0: हाँ,
1: तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा यू नो, और मेरे बाल लंबे हुआ करते थे,
0: हाँ, हाँ,
1: तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक हाथ
0: पकड़ के
1: कई बार
0: दरवाजे पे लटक जाऊं।
1: आई एम टेलिंग यू, मैं सच कह रहा हूँ कि कई बार पता नहीं किसने मुझे बचाया है, फिसलते फिसलते मैं बचा हूँ। तो ये मेरे 5 साल ऐसे ही गवाए हैं, और मैं उसके बाद भी ट्रेन में ही ट्रैवल करता था, क्योंकि वो फटाफट हुआ करता था।
0: दोस्तों, ये जो टेरेंस जो कुछ कह रहे हैं, ये सिर्फ सुनिए, इसे सिर्फ सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। इस पर अमल बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये मैं आपको बता दूं,
1: हाँ,
0: क्योंकि ये बहुत खतरनाक
1: है।
0: मुंबई में हर दिन कई कई बच्चों की जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपाहिज हो जाते हैं, तो इसको सिर्फ सुनिए और कान दूसरे कान से निकाल दीजिए। अब आगे बढ़ते
1: हैं। नहीं, सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था, और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को खुश करना चाहता था, या मैं जनरली मैं उदास नहीं रहता हूँ, मैं ऑलवेज हसमुख रह करता था, मैं वो गाने सुनता था या वो गाने गाता था, सुनता भी नहीं था, गाता था, जो मेरे दिल को हल्का करे। लाइक मैं बताऊँ कि एक गाना है देवानंद सर का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ा। ये ऐसा गाना मुझे दिल के बहुत करीब है। मैं जिंदगी

0: ये गीत तो हमने सुन लिया,
1: हाँ,
0: जिंदगी के जो कश्मकश रहती हैं उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए किसी तरह के नशे से, बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना चाहिए।
1: नहीं, ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया ना, और जो लाइफ में मजा है और जो जिज्ञासा में मजा है, लाइफ को खोजने में मजा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं।
0: और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में धुत थे, आज भी हैं।
1: तो ऐसा मैं ये भी कहूंगा कि मैंने 35 साल की उम्र में, 35 की उम्र में मैंने बिना शराब की बूंद चख ली, फिर मैंने लोग सिगरेट पीते थे, देखते क्या है, तब तक तो मुझे कोई थे ही नहीं, मतलब मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था। और देखा क्या, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस पड़ रहा है, लेकिन कि जो नशा लाइफ में है और जीने में है उससे बहुत कम है, तो कभी वो लत या लगाव लगाई नहीं।

0: अच्छा टेरेस, अब हम उस पर आते हैं जब आपका जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया, अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग क्लासेस के अलावा फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी इच्छा तो रही होगी कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं। अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदारी की बात करूं, तो आप चेहरा मोहरा फिजिक हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं, आज भी हैं।
1: शुक्रिया।
0: है ना, तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं?
1: देखिए, आज के तारीख में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है। मेरे जमाने में मुझे कोई समझ नहीं थी और कोई यू नो गॉडफादर नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं है कि अच्छा ऐसा ऐसा करो। तो यू नो कई हद तक मैं यू नो सोचा रहा कि ये शायद मुझे कौन लेगा, मुझे कौन काम देगा।
0: लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना?
1: हीरो नहीं, मुझे थिएटर का बहुत शौक था।
0: अच्छा।
1: और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियोस भी मिले, जैसे शान का एक गाना रीमिक्स, तभी रीमिक्स का गाना बहुत चलता था। शान ने गाया था, माना जनाब ने पुकारा नहीं, उन्होंने एक गाना रीमिक्स किया था।
0: हाँ।
1: उसके मेन किरदार जो मेन मॉडल जो मॉडलिंग जो मेन कैरेक्टर है वो मैं प्ले कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोज मैंने किए बड़े बड़े यू नो जाने माने डायरेक्टर के साथ, लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहाँ जाऊं, वो मुझे समझ नहीं थी। और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपनी परिस्थिति आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं यू नो अच्छा बनाऊं, वो इसी में लगा पड़ा रहता था। और यू नो ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो कभी कोई सपोर्ट ना कोई बनाने वाला कि अच्छा ठीक है यू नो तू इसमें अभी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं। तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले नहीं है, जो था सही था, अगर होना था तो हो जाता। अब जाके मैं थोड़े मैं समझता हूँ कि मेरी स्थिति जो है अच्छी है।

0: तो अब जाके मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ और जो ऐसे काम मिल रहे हैं जो एक्टिंग के माध्यम में है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं मुझे एक जरिया मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का। लेकिन उस वक्त पे मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था और ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं बन जाऊंगा। मुझे लगा कि यार जो फैमिलीज आती थी, ट्रेडिशनल फैमिलीज आती थी, उन्हीं के बच्चे सपूत जो है वो आगे बढ़ते थे, तो वो कभी वो जो अरमा भी था वो वहीं के वगैरह। तो मैंने बोला कि ये शायद इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैंने अपने आप को सीमित किया, किसी की गलती नहीं है।
1: फिर
0: मैं
1: आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे
0: कैसा
1: मिला? क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम रहे हैं।
0: तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया, और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं और फिर 18 या 19 साल में मैंने कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफ भी करने लगा, तो मेरा नाम लोगों में सुनने में आया था कि हाँ ये कोरियोग्राफ करता है, स्कूल कॉलेज फंक्शन सब दूसरे कॉलेजेस को भी कोरियोग्राफ करता है। तो जो दूसरे कोरियोग्राफर्स थे वो मुखर जाते थे मुझे यूज़ करने, क्योंकि ये तो कोरियोग्राफर है, ये तो अपना काम देख के निकल जाएगा कहीं, तो वो डर जाते थे। मैं अगर चाहूं भी तो उनके साथ काम करूं, बोलते नहीं क्योंकि तुम तो कोरियोग्राफर हो, तुम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है। तो फिर मैं कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं किया। और फिल्म जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, एक छोटा सा कोरियोग्राफी का सेक्शन था लगान में, वॉल्स का सेक्शन था, वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता जो आमिर की पहली बीवी थी वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की, तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉल्स, जो टेक्निकल वॉल्स है वो कोरियोग्राफ करके दिखाए।
1: वो जो अंग्रेज लड़की डांस
0: अंग्रेज
1: करती
0: लड़की
1: है
0: नाचती है,
1: वो वाला
0: माय
1: डांस
0: हार्ट इज, हाँ
1: सेक्शन।
0: वो वाला। हाँ, तो मैं रीना को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट रहती थी, क्योंकि वो आती थी सीखने के लिए। मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था कि डांस और फिटनेस का दौर चल रहा था, तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया और मैं औरतों को वेट लॉस करवाता था।
1: उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी
0: हाँ,
1: पहले इसको।
0: इसको
1: हाँ
0: तो रीना मेरी वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए। मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना और उन्हें मुझे ये प्रस्ताव पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना कोरियोग्राफ करें, ये जो थोड़ा सेक्शन है, और बस वॉल्स करना है, आपको तो आता ही होगा, आप तो ईसाई धर्म के हो। तो मतलब कि ईसाई धर्म का ये मतलब नहीं कि मुझे वॉल्स आता हो। ये तो तुम करते हो तुम्हारे पार्टीज में से। नहीं, मुझे नहीं आता ये सब, ये तो एक अलग स्टाइल है। नहीं, ये तुम पाना चाहिए, क्योंकि हमारे फिल्मी कोरियोग्राफर्स नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके से तुम चलते हो, जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, लगता है कि तुम कर पाओगे ऐसे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। फिर एक बार तुम आमिर से मिल लो। मैं आमिर से मिला, आशुतोष जी से भी मिला, और उन्होंने मुझे और भी डरा दिया कि उन्होंने कि नहीं, वॉल्स तो हमें चाहिए, लेकिन हमें ना वो 18th सेंचुरी, क्योंकि हमारी फिल्म 18वीं सदी में
1: का कहानी है।
0: कहानी है, तो 18वीं सदी की जो वॉल्स हुआ करती थी, वियनीज वॉल्स, वो हमें चाहिए।
1: बताइए।
0: तो मैं तो वहीं पर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं कैसे शूट करते हैं, मुझे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
1: मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूं, कि आप कोरियोग्राफी करते
0: हाँ, लेकिन
1: थे स्कूल्स
0: स्टेज,
1: में
0: हाँ
1: और
0: फिल्मों के लिए
1: कॉलेजेस
0: नहीं,
1: में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है,
0: अलग
1: उसके
0: होती है,
1: नुएंसेस अलग होते
0: एकदम
1: हैं,
0: अलग सर,
1: उसके ट्रिक्स अलग होते हैं, वो
0: एब्सोल्युटली
1: तो आप जानते नहीं थे। फिर
0: एब्सोल्युटली नहीं।
1: आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया, ये सवाल पे मैं आने वाला था, आप खुद ही आ गए, तो आप
0: हाँ,
1: दोनों चीजों को जोड़ के
0: साथ में
1: बताइएगा।
0: जरूर। तो फिर मैंने मेरा एक उसूल है कि जो चीज आपको नहीं पता वो सीधा सामने बोल दो, सच बोलो, क्योंकि सच बोलोगे तो सब कुछ ना कुछ हल मिलेगा। तो मैंने सीधा रीना को बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता, और ना ही मुझे फिल्म, मैंने कभी फिल्म कोरियोग्राफ किया है। तो मैंने रीना को रूम में बता दिया कि ऐसा ऐसा है। रीना ने मुझे फिर से रूम में बैठा दिया आमिर और आशुतोष के साथ, और उन्होंने बोला कि देखो इसको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे। तो आशुतोष ने बोला क्या है आप बताओ। आशुतोष सर वॉज सो नाइस टू मी, ही सेज डरने की बात नहीं है, तुम बहुत डरे हुए हो, आप डरो मत। इट वॉज सो स्वीट, क्योंकि मैं बहुत, आई थिंक वॉज ओनली 24 ईयर्स। सर मैं नहीं करना, मैं बोल रहा मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना है। सर क्यों डरे हो, आपको आता है, मैं सीख लूंगा, लेकिन सर मुझे मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है ऐसे, वो हमारी जिम्मेदारी, और हमारे पास अनिल जी है, अनिल मेहता जी है, वो कैमरा मैन है सबसे सीनियर्स, हम संभाल लेंगे, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस दिखाओ, कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी। अरे ठीक है। आमिर ने भी बोला कि आप डरो मत, आप करो, यू बी फाइन। तो फिर मैंने वो स्टाइल सीखा। मैं एक सलोमी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है,
1: ओह
0: हाँ, तो वो सिर्फ वो जानती थी वो पर्टिकुलर स्टाइल। तो मैं उनके घर गया, नेपिन सी रोड का घर था मलबा हिल में, मैं गया,

0: मैंने बोला कि मुझे सीखना है, और उन्होंने ठीक है मैं सिखाऊंगी। तो मैंने भर्ती किया अपने आप को, सीखा, फिर मैंने वही चीज़ कोरियोग्राफी में डाली। गाना ए आर रहमान का गाना था, वो मैंने लिया, कोरियोग्राफ किया, फिर बुझ गया। वहाँ पे उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया, और अनिल मेहता को मैंने साफ साफ कहा, सर मुझे कुछ नहीं आता कैमरा के बारे में, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँगा सेट पे, मैं क्या, मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता कि कब एक्शन बोलूँ कब नहीं, कब नगाड़े को बोलूँ कि रोल साउंड, ये मैंने सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। सर कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद एक बुक दिया, इट्स कॉल्ड द 5 C's ऑफ कैमरा। अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं या कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये एक्चुअली कोरियोग्राफी के बारे में नहीं बताता लेकिन कैमरा के बारे में बताता है, और ये क्या बोलते हैं ना, ग्रंथ है। अगर आपको कैमरा के बारे में सीखना है, दिस इज द बुक फॉर टू गो फॉर, द 5 C's ऑफ कैमरा। तो अभी मुझे पढ़ाई लिखने में बहुत शौक है, तो मैं वो बुक को रातों रात खा गया सब कुछ, और मैंने नोट्स लिख दिए कि जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने नोट्स कर दिए। मैंने अनिल मेहता सर को बता दिया कि ये मैं समझ गया, ये नहीं समझा, आप मुझे बताइए। सर आप 2 दिन मेरे साथ आइए और देखिए क्या हो रहा है। मैंने देखा, समझ गया, और मैं बहुत फटाफट समझ जाता हूँ। तो वो मेरी मतलब, मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई दिखाया तो मैं फटाफट समझ जाता हूँ। तो मैं सेट पर रह कर मैं सीख गया, और फिर मेरी 3रे दिन मेरी शूट लग गई, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और
0: बड़े
1: इतनी बड़ी
0: कलाकार
1: कला, बड़ी फिल्म थी,
0: को
1: बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर
0: हाँ
1: की और आशुतोष की भी, और
0: करेक्ट।
1: फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म
1: हाँ,
0: फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो
0: हाँ
1: फिल्म रिलीज हुई होगी
0: हाँ
1: और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा,
0: हाँ
1: तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया है सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली। तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज़्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया
1: वो
0: था।
1: जाहिर सी बात है ना।
0: लेकिन एक्चुअली बोलूँ वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूँ, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे तो वो लोगों के नज़र में, अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया।

आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का पहला भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। अमलतास की झालरों पर जब उतरती है चांदनी, हवा के झोंके कुछ और मुखर हो जाते हैं। ताल झूमता है, कुमुदनी हुलस जाती है, तब अचानक होठों पर कोई अधूरी सी बात चली आती है।

दिल जोड़ता है टूटे हुए तार को, तो कहीं दिल मचलता है बस एक इकरार को। कभी तो मिलता नहीं जरा सा करार, और कहीं छाया है नाजुक एहसासों का खुमार।

ये राज हैं ऐसे जो सरेआम बताए नहीं जाते, ये नख़मे हैं दिल के जो हर सांस पर गाए नहीं जाते। इन्हें तो बस वही गा सकता है जिसके दिल में बेपनाह मोहब्बत हो और आवाज़ हो ऐसी पवित्र कि लगे स्वाति की कोई बूंद हो।

फासले कदमों के नहीं हो, बीच में कई बरस खड़े हो, रातों में जागी हुई आंखें हो, होठों पर खामोश हुए नगमे हो, तो भी कोई सुन ले तो ये नगमे फिर गा सकते हैं और उन आंखों में उतर सकती है नींद की परी।

टप टप कर स्मृतियों की बरसात होती है जब कभी, रात के आंगन का कोना कोना भीग जाता है, अंधेरे के सितार पर गूंज उठता है एक उदास राग, और चांद अपने ख्यालों में डूब जाता है।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: तराने नए पुराने की पहली पेशकश लीजिए सुनिए।

100 डेज, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दिलीप ताहिर ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत था।

किशोर कुमार और आशा भोसले को आप सुन रहे थे। इस गीत में अपराध फिल्म का नाम था। इंदीवर ने इस गीत को लिखा और संगीतबद्ध किया कल्याण जी आनंद जी ने। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तराने नए पुराने।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मिस्टर नटवरलाल से। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, राजेश रोशन ने धुन बनाई थी। लीजिए ये अगली पेशकश प्रोग्राम तराने नए पुराने की।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का नाम था और इसके साथ ही अभी वक्त है थोड़ा सा अंतराल लेने का। बाकी के नगमे आप सुनेंगे समाचारों के बाद। यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

कार्यक्रम रिले करी सुनाइलु आकाशवाणी कटक केन्द्रु आकाशवाणी बारिपदा प्रचार करुछु आदिवासी संगीत।

0: ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନାନୀ।
1: प्रधानमंत्री सूर्य घर मागणा बिजुली योजना योजनार लक्ष्य विद्युत बिल सहित वायुमंडल अंगारकाम्ल को ह्रास करिबा सोलार स्थापन करिबा अक्षय शक्ति क्षेत्र में विप्लव आणिबा सबुज शक्ति उत्पादन को प्राथमिकता देउछन्ति सरकार आज ही पीएम सूर्य घर योजना पई आवेदन करंतु निज छातरे सौर पैनल लगांतु एवं 138,000 टंका पर्यंत सब्सिडी पांतु।

0: नमस्कार श्रोता बंधु, आपण मानक आज बनानी कार्यक्रम को सबुज स्वागत। श्रोता बंधु, स्नेह श्रद्धा भल पाइबार रज्जुरे आमे माने बांधि रहिचे आउ आमर जीवन को अतिवाहित करुछे। एई माटी रे जन्म हेछु आउ एई माटी रे भी शेषकु आमे मिसि जिबा। एई अढ़ई दिनर जीवन भितरे केबे कण आमे चिंता करिछु जे केते कण पाइछु आउ कण सब हरैछु। सुखर निसारे मसगुल हे मेंचा मेंचा दुख को टाणी आनिछु। दिन को दिन बढ़ी चली सामाजिक समस्या आउ ता सहित प्रकृति हरई चली तार भारसाम्य हो है बढ़ी चली जनसंख्या गाड़ी मटर कल कारखाना खनी खादन रास्ता घाट धूली आउ धुआं भितरे अण निश्वासी हे जाउची मनीष आउ ता सहित प्रदूषण रा मायजाल रे कलुषित हेबारे लागिछि आमो परिवेश। निज हातरे निजे उजाड़ी देउची निजर वर्तमान आउ भविष्यत को। एते उपलब्धि परे मध्य सचेतन हेउनी ए मनीष। उन्नति प्रगति नारे विपत्ति को टाणी आणुची। वृक्ष ही जीवन ए कथा को पासोरी देउची केमिति ना सबु किछि जानी मध्य अजणरे अभिनय करि चलीची। श्रोता बंधु, एबे भी समय अछि, आसंतु निज मानसिकता रे परिवर्तन आणिबा। प्रचुर परिमाण रे वृक्ष रोपण करी तार जत्न नै ताकु द्रुम रे परिणत करिबा आउ सबु चिमामय परिवेश सृष्टि करिबा। आधुनिकतार चाकचक्य आउ मिछ पारिबा पणियारु बाहरि आसी आमकु बंचिबाकु पडिब पूर्व परि। आमरी हातरे आमे पूणी थरे सजेइबा आमर परिवेशकु। सामाजिक वनीकरण कार्यक्रम जरिया रे पृथ्वी को सबुजिमारे सजेइ दबा आमे। पिलाटीए गछटीए एई मंत्रे अभिमंत्रित हेइ आगे चलिबा आगकु आगकु। सहरांचल वनीकरण कार्यक्रम को जथेष्ट परिमाण रे गुरुत्व देबा आमे माने। लोकंक प्रत्यक्ष ओ परोक्ष तत्वावधान रे सहरांचल वनीकरण कार्यक्रम रो किपरि भाबरे सफल रूपायन करा जाई परिबो एई विषय रे चिंता करिबा मध्य आमे। कोरोना महामारी रे जेमिति अम्लजन बिना मृत्यु वरण कले लोक माने तार जेमिति पुनरावृत्ति न हेउ से कथा को मध्य हृदयंगम करिबा आमे। बनानी बनानी बनानी। श्रोता बंधु, एही परिप्रेक्षी रे आज बनानी कार्यक्रम रे रही जे एक विशेष आलोचना। आलोचना रा विषय हेउची परिवर्तित जलवायु ओ सहरांचल रे वनीकरण। ए संपर्क रे आलोचना करबा पई आम स्टूडियो रे उपस्थित अछंती वनखंड अधिकारी अजय सतपथी। तांका सहित आलोचना रे अंश ग्रहण करूछंती निहर पाला पटनायक। सर नमस्कार, आपण को स्वागत करूछु आज रा बनानी कार्यक्रम को।
1: नमस्कार श्रोता बंधु,
0: आज त हम आलोचना करबा परिवर्तित जलवायु ओ सहरांचल रे वनीकरण। एठी गोटे मन रे प्रश्न आसुची जलवायु ओ परिवर्तित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ.

0: मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ए देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security, our long and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला

0: भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चौथे लैवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लैवेंडर गोज ग्लोबल। दो दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लैवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लैवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लैवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के दो दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: खाड़ी देशों और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुख में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
3: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
4: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान

0: व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने छठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards U.S. military facilities in Kuwait and Bahrain. And in hockey, Indian men's team lifts under 18 Asia Cup, beating hosts Japan in Kakamigahara. Indian women's team also clinches bronze. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting today with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikanta Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard

Spotlight. This is Akash.

लता मंगेशकर को और सखियों को आप सुन रहे थे मधुमती फिल्म के इस गीत में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया था सलिल चौधरी ने।

प्रेम पर्वत इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, मीनू पुरुषोत्तम की आवाज में, जानिसार अख्तर ने इसे लिखा था और जयदेव का संगीत।

मोहम्मद रफी को आप सुन रहे हैं कश्मीर की कली इस गीत में। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यही समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदन आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

राजेंद्र कृष्ण साहब का शुमार फिल्म जगत के बेहतरीन गीतकारों में होता है। उनकी कविता में नजाकत है, जज्बात की गहराई है और दिल को छू लेने वाला फन है।

वो चाहे अलसाई सी दोपहर हो, कोई हसीन शाम हो, या फिर कोई उदास अकेली रात। राजेंद्र कृष्ण के बोल उन पलों में कभी प्यार, कभी इकरार, कभी रुसवाई और कभी जिंदगी का कोई और दर्द इस तरह भर देते हैं कि उस दर्द से भी मोहब्बत हो जाए।

6 जून 1919 को शिमला में जन्म हुआ था अपनी कलम से दिलकश नगमों को जन्म देने वाले इस गीतकार का। बहुत कम उम्र में ही राजेंद्र कृष्ण मोहित हो गए थे कविता पर। रोजी रोटी की जद्दोजहद में 1940 तक म्यूनिसिपल ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की। उनकी इस नीरस नौकरी को रसीला बनाती रहीं फिराक गोरखपुरी, एहसान दानिश, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी की रचनाएं। 1940 के मध्य में राजेंद्र कृष्ण मुंबई आ गए। फिल्मों की दुनिया में बतौर लेखक और गीतकार अपनी प्रतिभा को आजमाने। संघर्ष की जंजीरें टूटी 1947 में जब फिल्म जंजीर के लिए उन्होंने लिखा अपना पहला गीत। 1947 में राजेंद्र कृष्ण ने लिखी फिल्म जनता की स्क्रिप्ट, लेकिन कामयाबी मिली 1948 में बने फिल्म आज की रात से। निराशा भरी रातें ढल चुकी थीं और राजेंद्र कृष्ण लगातार काम पाने लगे। 1949 में श्याम सुंदर के संगीत से सजी फिल्म लाहौर में उनके गीतों को बहुत लोकप्रियता मिली। उन्हीं में से एक था ये गीत।

लगभग तभी एक और फिल्म आई, बड़ी बहन, जिसके संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम। राजेंद्र कृष्ण के गीत एक बार फिर संगीत रसिकों के होठों पर थे।

तमिल के जानकार राजेंद्र कृष्ण उन दिनों के मद्रास के मशहूर बैनर एवीएम की पहली पसंद बन गए। वहां के अन्य निर्माताओं ने भी राजेंद्र कृष्ण की रचनात्मक प्रतिभा की कद्र की। एवीएम की लगभग सभी हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट के अलावा उनके गीत लिखे राजेंद्र कृष्ण ने।

राजेंद्र कृष्ण ने अपने समकालीन लगभग सभी नामचीन संगीतकारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे अलबेले गीत। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में फिल्म खानदान के इस गीत के लिए।

सन 1988 में शब्दों का ये चितेरा हमारे होठों पर अपने गीतों की गुनगुनाहट छोड़कर शब्द ब्रह्म में ही विलीन हो गया।

0: अब अपने दोस्त कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: जननी
1: किए प्रभु शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण
0: हाँ मात तुम्हार एक अनिष्ट प्रार्थना मत विचलित करिछि
1: प्रभु अंतर्च्यामी समस्त अंतरर वेदना जे जानी परंती से मो हृदय ज्वाला निश्चय बुझिबे
0: मु जाने मात
1: मोर पुत्र गण स्वर्ग सिंहासन विताड़ित होई जे की जंत्रणा भोग करछंती ता तो प्रभु जानंती जननी होई पुत्र मानकर ए दुख कष्ट मु आउ सहय करि परुनी प्रभु
0: हाँ मात देवराज इंद्र स्वर्ग सिंहासन विताड़ित हेबा एक दुर्भाग्यजनक घटना
1: मोर विनीत प्रार्थना केवल ताहा ही नारायण मोर पुत्र मानकु ए विपदर रक्षा करंतु
0: तुमर पुत्र मानकु रक्षा करबा त मोर एक कर्तव्य मात किंतु
1: प्रभु
0: देवराज इंद्र को गादीच्युत कराइबा मध्य थिला विधातार इच्छा से इच्छा को सम्मान देबा को जाई मु नीरव थिली किंतु देवराज को स्वर्ग सिंहासन पुनः प्रदान आगामी समय स्वीकारोक्ति
1: प्रभु
0: से समय आगत प्राय देवराज धैर्यच्युत न हो आगामी समय को अपेक्षा करंतु उज्ज्वल भविष्य तांको द्वार देश रे कराघात करुछि जननी
1: प्रभु
0: केवल इंद्रादि देवगण को सेमानकर हृत सिंहासन पुनः प्रदान निमन्ते मोर एक अवतार उद्दिष्ट हेब मा
1: चक्रधारी
0: मु खूब शीघ्र जन्म नेबी एक क्षुद्र देही मानव रूपरे
1: प्रभु
0: ए अवतार हेब एक अपूर्व अभिनव अवतार
1: प्रभु
0: सेथिपाई मते जन्म नेबाकु हेब एक पुण्यमय जननी गर्भरु
1: से जननीर पुण्यफलर सीमा नाही प्रभु
0: मु जदि तुमको अनुरोध करे सही गुरुदायित्व बहन करबाकु
1: मु किछि बुझि परुनि प्रभु
0: मात मोरे निवेदन तुमको तुमे मते तुमर पवित्र गर्भरे स्थान देबो तुमर पुत्र भाबरे
1: इति बड़ भाग्य मोर काहि प्रभु
0: ना मात कालचक्रर गति को सम्मान देबाकु चाहि तुमको अन्य मानक पाई दस मास दस दिन दारुण कष्ट निर्यातना सहिबाकु पड़िबो जननी मोर हस्तपदर निर्यास तुमको बहन करिबाकु पड़िबो मोर क्रीड़ा अंगचलन रे तुमर समग्र अवयव रे जेउ दारुण आघात सृष्टि होथिबो ता चिंता करि मु विशेष मर्माहत जननी
1: स्वयं चक्रधारी को निज गर्भरे स्थान देबा कष्ट जातना नहि प्रभु बरं स्वर्गीय आनंद अपूर्व भाग्य मोर
0: मात
1: ये अभागिन को एते बड़ भाग्यर अधिकारी करिछ प्रभु केउ भाषार प्रशंसा करिबि चक्रधारी को केउ भावरे प्रणति जणाइबि प्रभु
0: ना मात तुमे मते प्रणति जणाइबार अवकाश काही बरं तुमे मोर प्रणम्य
1: ना ना प्रभु चक्रधारी को प्रणति मु सज्ज करि परबिनि प्रभु
0: ना मात जननी प्रति संतान रे जे सर्वाद कर्तव्य
1: नारायण मोर समस्त जाला दुख अंतर्हित हेगला प्रभु मन लेस मात्र दुख नाही प्रभु मु आज आनंद अतिशय रोमांचिता अपूर्व भाव बेगर उत्फुल्लिता स्वयं नारायण को निज गर्भर स्थान दे पारे से कि भाग्य ही नहीं पारे
0: जननी मोर प्रणाम ग्रहण करी मोते विदाय दियंतु
1: धन्य धन्य तुम्हें देव देव नारायण सबरी दुख जंत्रणा न बुझुले तुमको अंतर्चामी किए कहता सकल नियम नियम कथा तुम्हें समस्त कर्मर कर्ता तो तुम्हें निजे हे अनंत हे देव देवेश हे जगन्निवास परम कारुणिक तुम्हारे इच्छा पूर्ण हेऊ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी

वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नई युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।